की अपनी पसंदीदा भोर सुहाने की। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:34 और 58 सेकेंड। मैं हूं आपके साथ फिरोज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भोर सुहाने की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए दिन में हम सब कदम बढ़ा चुके हैं और एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई रोशनी के साथ। मगर इन तमाम चीज़ों में एक बेहद परेशान करने वाली भी चीज़ होती है जो हमारे जहन में कई बार ये बात आती है, और वो होता है किसी भी हार का। हार एक ऐसा शब्द है जिससे सिर्फ इंसान ही नहीं टूटता बल्कि उसके हौसले भी टूट जाते हैं, उसके इरादे भी टूट जाते हैं। मगर ये हमेशा के लिए नहीं होता। हार सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन जब हार हमारे सामने खड़ी होती है तो दिल थोड़ा मायूस जरूर होता है। लगता है शायद हमसे नहीं हो पाएगा, शायद हमारी कोशिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और ऐसे ख्यालात जब बार बार आने लगे तो फिर आप पीछे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें उसमें कामयाबी मिले। लेकिन जरा सोचिए, अगर हर कोशिश पहली बार में कामयाब हो जाती तो शायद हमें सब्र, हौसले और मेहनत की असली कीमत कभी समझ में ही नहीं आती। इसलिए हार भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, तभी हम उसकी अहमियत को समझ पाते हैं, उस जीत की अहमियत को समझ पाते हैं। हार हमारी मंजिल नहीं है, वो तो रास्ते का एक पड़ाव है। वो हमें बताती है कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ फिर कोशिश करनी है और कहाँ अपने सपनों पर थोड़ा और यकीन रखना है। आज की सुबह अगर आपके सामने कोई मुश्किल है तो उससे घबराइए मत, उसे देखकर बस इतना कहिए, मैं फिर कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। याद रखिए, गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठने की कोशिश छोड़ देना जरूर हमें रोक देता है। तो आज अपने दिल में उम्मीद रखिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए और कदमों में हौसला, क्योंकि जिंदगी का फलसफा बहुत सीधा है। हर हार अपने भीतर एक नई जीत का रास्ता छुपाए बैठी है, इस नगमे की तरह।

हार के बाद ही जीत है। गिरना संभलना हारना जीतना ये हमें रोकता नहीं बल्कि हमें नए हौसले के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। रास्ता कितना भी मुश्किल हो मुझे रुकना नहीं है, बस यही याद रखना है। जिंदगी में ऐसे मकाम ज़रूर आते हैं जब मेहनत के बाद भी नतीजा हमारे मुताबिक नहीं मिलता। मन मायूस होता है, लगता है शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हार हमारी ज़िंदगी के सफ़र का एक मोड़ है जो हमें रोकता नहीं बल्कि एक दूसरा रास्ता दिखाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। इसलिए कभी भी उस मोड़ से उस रुकावट से घबराएं नहीं। कभी कभी वक्त हमें रोकता नहीं बल्कि हमें तैयार करने की कोशिश में लगा रहता है। वो हमें इस बात के लिए तैयार करा रहा होता है कि आप सफलता के लिए तैयार रहिए, कोशिश कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक असफल कोशिश हमें बताती है कि अगली कोशिश में क्या बेहतर करना है। इसलिए गिरिए तो उठिए, थकिए तो थोड़ा ठहरिए, लेकिन अपने ख्वाबों से रिश्ता मत तोड़िए। आज अगर आपके सामने कोई इम्तहान है, कोई परीक्षा है, चाहे वो ज़िंदगी का हो या रिश्तों का हो या आपके सपनों का हो, तो पूरे हौसले के साथ उसका सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए और इसी जज्बे को बेहद खूबसूरती से आगे बढ़ाते हैं ये, क्योंकि ज़िंदगी हार मान जाने का नाम नहीं, रुक जाने का नाम नहीं। रुकना तो कतई नहीं है, बस चलते रहना है इस नगमे की तरह।

किशोर कुमार साहब के गाए इसी गीत के साथ आज के भोर सुहानी को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

స్వదేశంలో ఈ మెగాహెడ్స్ వేర్.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉ. सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है।

జడుతాం.

కాలమణి సంత కాడాయని సద్దు ఆకతాయే ఊసులకు ఆట విడుపు లేదు లేదు.

0: विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम. जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को. इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ यीजिन वाया शूट ऑफ. इंडियाज फाइनल डे एट द एशियन गेम्स 2026 बिगिंस ऑन अ गोल्डन नोट. शी हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेब्यू कैंपेन फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स. शी फिनिश विद टू गोल्ड एंड वन सिल्वर मेडल. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कुमकुम मोहत की. एंड एज पार्ट ऑफ द वुमेन्स टीम शी वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दिस इवेंट. हर मिक्स Team silver was also the first medal for India in that category. Ultimately, she became the first Indian woman to win a gold medal in a recurve इंडिविजुअल इवेंट. शाहिद
1: जी बिल्कुल, बात करते हैं कुश्ती की. जहां मैट पर उठा पटक जारी है, दो पहलवान जहां बाहर हो गए, वही तीन पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं. भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था. मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया. उधर अंतिम पंगाल भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की एसबोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल कुश्ती है उसमें कजाकिस्तान की सुग्याला ओमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर सामना करना पड़ा. वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमागोचोई ने 10-0 से हराया था. अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और रेपेचेस खेलें. उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी.
0: जी और टैक्वेंडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स. शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजिन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड. ज्योति राज यादव now remains India's only hope in the sport as she gets ready for a round of 16 match. Or in the semi-final, unka mukabla hua Zhu Zingyi of China se. Wahi women's 67 kg round of 16 mein Jyoti Yadav, jinka mukabla hua Kannalak Chuanchulin se, wahan par bhi Jyoti Yadav ko haar ka samna karna pada 15-4, 15-2 se, yani 0-2 se she lost that round. She has thus been knocked out and India's campaign in the sport also ended with this loss.
1: अगली खबर की तरफ चलो, उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए. उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी ने बताया, उन्होंने जीत हासिल की है. जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, दो गोल्ड आए. वहीं कुश्ती में तीन पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है.
0: जी एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स. भारत इस समय है 5वें स्थान पर आज दिन की शुरुआत में. कुल उसके पास है 77 मेडल्स जिसमें 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज है. लेट्स सी हाउ द डे एंड्स फॉर इंडिया. फॉर नाउ दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शाहिद आजमी साइनिंग ऑफ. हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच ऑल सेट टू बिगिन.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.
3: अभी आप

0: Games 2026 updates.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूं साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 के। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहां प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर डिड दैट इन 2002। यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड का गोल्फ में, जो प्रणवी उर्ज भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई। इसके साथ आपको ये भी बताएं, प्रणवी उर्ज हेल्ड हर नर्व्स to win the women's individual gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Yin Roening, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory.
3: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं, नागोया में भारत की 70,000 की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया। एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया। मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया। स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण, जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है, उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है।
2: Right, and now a quick update on cricket, where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs, but Abhishek Sharma, who's presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
3: कुश्ती की बात कर लेते हैं साक्षी। कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है। भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंतिम पंघाल ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया। अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया। ताजिकिस्तान के अयाला बोलोसुकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया। उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। यहाँ पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली। लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली। उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे.
2: राइट एंड अ क्विक अपडेट ऑन द मेडल टेबल. प्रेजेंटली इंडिया इज ऑन द फिफ्थ पोजीशन विद अ टोटल ऑफ 79 मेडल्स जिसमें 18 गोल्ड 26 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल हैं. जी हां, एक और गोल्ड मेडल भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी पोजीशन मेडल टेबल पर अब 5वीं हो चुकी है. देखना होगा कि आज दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा. फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत. हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: कमिंग अप नेक्स्ट विल बी न्यूज हेडलाइंस।
3: ఆకాశవాణి సమయం 11:00 అవుతుంది. వార్తల ముఖ్యాంశాలు విందాం.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और

0: రెయిన్బో 101.9. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్. దిస్ ఈస్ 101.9 ఎఫ్ఎం రెయిన్బో. టుడే ఈస్ ఆల్సో నేషనల్ టెకీస్ డే అండ్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్ వెరీ సూన్ ఆఫ్టర్ దిస్ షార్ట్ కమర్షియల్ బ్రేక్.
1: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం, మీ భవిష్యత్తుకు తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తూ బీమా రక్షణ గ్యారంటీడ్ అడిషన్ తో ఇంకా మరెన్నో ప్రయోజనాలు ఎల్ఐసి బీమా ప్లాటినం తో. ఎల్ఐసి, ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
0: వెల్కమ్ బ్యాక్. దిస్ ఇస్ ఆర్జే కైవల్య
2: అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్జే ప్రియబాంధవి.
0: హియర్ వి ఆర్ టు టాక్ అబౌట్ నేషనల్ టెకీస్ డే. తో ప్రియా, ముజే ఏక్ బాత్ బతా, आज सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या किया तूने?
2: ऑनेस्टली अलार्म स्नूज किया, फिर फोन उठाया, क्यूआर कोड स्कैन करके कॉफी ऑर्डर की और कैब बुक करके स्टूडियो आ गई. व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस?
0: आई मीन एग्जैक्टली माय पॉइंट. सुबह के पहले 30-40 मिनट्स में तूने कैब्स, पेमेंट्स, मैप्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सब यूज कर लिया. पर कभी सोचा है कि ये सारा मैजिक बैकग्राउंड में करता कौन है?
2: सिंपल है ना कैवल्या, कोड लाइंस, एल्गोरिदम्स, नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ब्रिलियंट माइंड्स बिहाइंड देम, आर टेकीज.
0: बिंगो. और आज वही दिन है जब हम इन अनसीन हीरोज को सैल्यूट करते हैं. तो टुडे इज नेशनल टेकीज डे, अ डे डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग टेक विजर्ड्स एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन टू स्टेप इनटू स्टेम फील्ड्स व्हिच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ.
2: एग्जैक्टली कैवल्या, और सच कहे तो आजकल टेक का मतलब सिर्फ डार्क रूम में बैठ के स्क्रीन पे ग्रीन कोड कर टाइप करना नहीं है. टेक इज लिटरली एवरीथिंग.
0: Totally. गेम डिजाइनर बनना हो या फिर AI आर्ट क्रिएट करना हो या फिर स्पेस रॉकेट्स लॉन्च करने हो या फिर मेडिसिन में लाइफ सेविंग टेक बनाना हो, टेक एवरीवेयर इज द अल्टीमेट सुपर पावर.
2: ट्रूली कैवल्या, लेकिन पता है क्या, बहुत से यंग किड्स और स्टूडेंट्स सोचते हैं, यार मैथ इतनी टफ है, कोडिंग तो मेरी बस की बात नहीं है. बट द ट्रूथ इज टेक इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी.
0: 100%. पहले लगता था कंप्यूटर इंजीनियर मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर डीबगिंग. आज लुक एट द ऑप्शंस यार, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स.

0: data scientists, robotic developers, and even ethical hackers. The scope is absolutely mind-bending.
1: So, if you are a student listening to us right now, don't be afraid to tinker. एक छोटा सा गेम बिल्ड करने से लेकर आगे जाके वर्ल्ड चेंजिंग एप्स बनाने तक योर जर्नी इन स्टेम स्टार्ट्स विद वन क्यूरियस क्वेश्चन. ये काम कैसे करता है?
0: एग्जैक्टली, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस आफ्टर दिस सॉन्ग, बट बिफोर दैट हियर्स अ प्रोमो.
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंग दी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई.
2: Hyderabad is a grand buffet.
3: And every dish has a story waiting to be told.
2: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
3: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
2: It's not just food.
3: It's culture, history and flavor rolled into one.
2: Jashne Hyderabad.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा, हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स विच इंक्लूड 3, 4, 7, 6s, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा, हु मेड 51 इन 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत जरूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया, वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट नाउ।
2: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन टिन टैन तथा चीन की 3 रुओंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते, वीर अहलावत छठे स्थान पर चल रहे हैं।
1: जी आज रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स, कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज, धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वाज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू secure the bronze medal in his name. आपको बता दें कि साउथ कोरिया finished off with the gold in the men's individual recurve, defeating Japan's junior Nakanishi 6-2 in the final. As a result, we saw that Japan got the silver, while Bharat ke Neeraj Chauhan took the bronze medal.
2: जी, कुश्ती से भी हम दो पदक यानी दो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्क्यूबी के खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से, हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20, खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 वर्ल्ड नंबर 19 की क्यूकी मोए से, जापान की खिलाड़ी है। हालांकि यहां पर अंतिम पंगाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती है।
1: Right, and also a quick update from the world of volleyball. Jahan Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, Bharat ki men's volleyball team ne is Asian Games ke andar is haar ke saath apne is safar ka bhi yahan par samapan kar liya. Aur aapko ye bata de, Bharat aaj kyunki Bharatiya representation ka Asian Games the last day, aur officially bhi hum baat kare to majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे. तो अब भारत अभी प्रेजेंटली है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज है. और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने, जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं, उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके. क्या भारत ये कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा. फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत. हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे. थैंक यू.
0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया.

0: as tongue twister as it sounds, and of course digital VFX.
1: Yes, they did, but they also used the manpower. Well, चिट्टी केवल सीजीआई नहीं था, लेगेसी एफर्ट्स ने रजनीकांत सर का एक असली रोबोटिक मैनिक्विन बनाया था, जिसे चाह लोग हरे रंग के क्रोमा सूट पहनकर रॉड्स के मदद से वीएफएक्स से हटा दिया था। ऐसी बना था वो रोबोट का हाथ उठाना, पैर उठाना एंड हेड रोटेटिंग मोशन।
0: वाओ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। और अंतिम में ट्रेन पर जो लड़ाई का दृश्य है ना, उसे आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस में से एक माना जाता है।
1: वेल यस, एंड द स्केल वाज क्रेजी। रोबो हैड ओवर 2000 विजुअल इफेक्ट शॉट्स। रिमेम्बर दैट आइकॉनिक क्लाइमैक्स। यस
0: या तो यही 16 इयर्स ऑफ रोबो की कुछ अनसुनी कहानियां है। तो और एक गाने के बाद हम लौटते हैं at 1 o'clock with the next segment, Dile Rubani. To suniye Mechanical Sundariya.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: वेल हम है हमारे सेगमेंट यादों की बारात में सेलिब्रेटिंग 16 इयर्स ऑफ रोबो. जब दुनिया में एआई का मतलब भी नहीं जानते थे तब शंकर सर ने सोचा और वो सोच को मशीन बना दिया. 16 इयर्स एगो देखा वो सपना, आज हम जी रहे हैं. यही विजन है, यही सिनेमा का जादू है. द डायरेक्टर Didn't make a machine, he engineered a cinematic phenomenon. 16 years of Robo, still got it. And the next up, we have another song which is similar to the Robo. Ravan movie ka hai. Kaivalya, please play the track.
2: Yes, and with this last song, we will end the segment Yaadon Ki Baarat and move into Dil E Rubani.

0: Welcome back. This is Akashvani Hyderabad, and we were talking about an inspiring, heartwarming story about my personal experience and a traffic policeman who was willing to help me. And honestly, agar wo us moment mein nahi rukte na, I don't know how I would have even gotten home that night, you know, Priya.
1: Yes, dekho, technically, unki duty traffic manage karni thi. But at that moment, unhone sirf apni duty nahi dekhi.
0: Exactly. They saw a person who needed help.
1: Aur shayad unke liye wo ek do minute ka decision tha. Bas ek auto roka, ek instruction diya, story over.
0: But mere liye, it meant getting home safely that day after standing drenched on the road for half an hour.
1: That's the thing about kindness, Kavalya. Hame kabhi pata nahi hota ki hamara small gesture किसी और के डे में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है.
0: एग्जैक्टली. और मुझे लगता है यू नो दैट स्टोरीज लाइक दीज रिमाइंड अस दैट ह्यूमैनिटी का कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता.
1: ब्यूटिफुली सेट कैवेलिया. हेल्प करने के लिए डेजिग्नेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी या रीजन की जरूरत नहीं है.
0: एग्जैक्टली. एंड कभी कभी ना बस सामने वाले को देखना और रियलाइज करना इनफ है कि मे बी आई कैन मेक दिस अ लिटिल इजियर.
1: And maybe that's the kind of everyday goodness we need more of.
0: Yeah, or because, you know, Priya, for us, it might be an insignificant act.

0: లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ ఏఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: Welcome back, dear listeners. The time in the studio is 1:29 and at 1:30 we have the Asian Games 2026 updates, followed by which we will continue with the Dile Rubani segment.
2: ఒక మంచి పుస్తకం మనకు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది,
3: ఒక కొత్త ఆలోచనను అందిస్తుంది,
2: ఒక కొత్త అనుభూతిని మనలో నింపుతుంది.
3: మరి మీకు నచ్చిన పుస్తకం మీకు ఇచ్చిన ఆ అందమైన అనుభూతిని మా శ్రోతలతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?
2: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో మీకందిస్తున్న ప్రత్యేక అవకాశం రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
3: 15 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారెవరైనా మీరు చదివిన పుస్తకం గురించి
2: మీ అనుభూతిని
3: మీ మాటల్లో
2: మా శ్రోతలతో పంచుకోండి.
3: మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ వివరాలను
2: readwithrainbow2026@gmail.com కు పంపండి.
3: మీ రీడింగ్ జర్నీ
2: మీ మాటల్లో మన శ్రోతల ముందుకు. పుస్తకంతో మీ ప్రయాణాన్ని
3: రెయిన్బోతో పంచుకోండి.
2: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
4: Welcome to the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Ghadi mein baj rahe hain to khair ki ded. Mera naam hai dosto Sakshi Mandwal aur mere saath is waqt yahan par maujood hai Mohammad Shahid Azmi. Aur sabse badi khabar is ghante ki ye hai ki Bharat aur Pakistan ke beech khela ja raha gold medal ka T20 muqabla finals. Bharat ne usme apna gold pakka kar liya hai. Ji haan, official confirmation ka bas intezar ho raha hai. Ek gend bachi hai. Officially match ki samapti mein Bharat ne jahan aaj ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, व्हिच इंक्लूडेड टू वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बाय अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स एंड तिलक वर्मा हु मेड 51 इन 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया रीच टू 211. वहीं पाकिस्तान ने जब वो इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, उनको चाहिए थे 212 जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अ फ्यू रन्स. एंड एज आई से दैट, इंडिया have brought home the gold medal in the Asian Games 2026. Huge congratulations to the Indian men's T20 cricket team. Pakistan ki pari unke nirdharit 20 over mein chasing 211. They got completely wrapped up for 192 runs. Shahid,
5: शानदार तरीके से भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया. उम्मीद भी की जा रही थी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान इतना संघर्ष करेगा शायद इतनी उम्मीद नहीं थी साक्षी, जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला. लेकिन भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को परास्त किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग.
4: जी ऑफ कोर्स, और 6 विकेट गवा के पाकिस्तान ने 20 ओवर में 211 रनों को चेस करते हुए 212 उनको जीत के लिए चाहिए थे. 192 रन्स में इनके पूरे 20 ओवर समाप्त हो गए. पाकिस्तान की तरफ से सबसे अहम किरदार जिसने निभाया, जिस खिलाड़ी ने, वो रहे हसन नवाज, जिन्होंने 51 गेंदों में 96 रन्स बनाए. उनको दो बार जीवन दान भी मिला. पहली बार उनका विकेट ड्रॉप हुआ था 4 रन्स पे, उसके बाद 59 रन्स पे अगेन ही वाज ड्रॉप्ड एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक 96 रन्स. दी ओनली सोल इंपॉर्टेंट बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूटर, या बैटर कहना चाहिए हमें, बिकॉज उसके अलावा बाकी सब खिलाड़ियों से कुछ खास हो नहीं पाया. ओवरऑल अ वेरी वेरी सॉलिड डिस्प्ले बाय द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, जैसे शाहिद ने सही कहा, तीनों क्षेत्रों में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आज.
5: जी बिल्कुल, शानदार प्रदर्शन किया था. अब 3 गोल्ड मेडल और आस है आज के दिन में, जैसा अंतिम पंघाल है, अमन सहरावत है, इसके अलावा हॉकी टीम से. जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल और आने वाले, लेकिन कुछ और मुकाबलों की झलक आपको दिखाऊं, बताऊं. जी हाँ, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का अभियान 6 स्थान पर समाप्त हो गया. 5वें और 6 स्थान के मुकाबले में भारत को थाईलैंड के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और 5वें सेट तक खींचा. अगर सेट स्कोर की बात करें तो 25-19, 17-25, 25-21, 17-25 और 15-17 भारत ने 2 सेट जीते, लेकिन निर्णायक 5वें सेट में करीबी अंतर से हार गया.
4: जी, और अगर हम यहाँ पे रिकर्व के मैचेस की बात करें, आर्चरी में रिकर्व के, तो भारत के नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा आज आमने सामने आए फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच. एंड उसमें हमने देखा कि नीरज चौहान बीट हिज फेलो कंपैट्रियट इंडियन धीरज बम्मा देवारा 6 Char in the men's individual recurve bronze medal match to claim the bronze medal. जी हाँ, bronze medal घर में वापस आ गया, ये कहना चाहिए घर ही में आ गया भारत के, क्योंकि दोनों भारतीय archers हम कहेंगे आमने सामने आज यहाँ पर थे. धीरज finished fourth after a semi-final defeat to South Korea's Lee Woo-seok और gold गया South Korea का नाम, silver रहा Japan के नाम, bronze आया इसमें नीरज के नाम.
5: जी रग्बी की बात कर लेते हैं. भारत छठे स्थान पर एशियन गेम्स में रहा रग्बी में. रग्बी सेवन्स टीम का अभियान जो महिलाओं का था छठे स्थान पर समाप्त हो गया.

0: पांचवें और छठे स्थान के मुकाबले में भारत को कजाकिस्तान से 0-20 से हार का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में कजाकिस्तान ने 10-0 की लीड ली थी, बढ़त बनाई थी, और दूसरे हाफ में भी 10 अंक जोड़कर मुकाबला 20-0 से अपने नाम कर लिया।
1: जी, और अब भारत की एक बार मेडल टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस जीत के बाद, इस गोल्ड मेडल के साथ, जो भारतीय क्रिकेट टीम, मेंस क्रिकेट टीम T20 के अंदर हमारे लेकर आज आई अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की जो गोल्ड है, गोल्ड मेडल्स, वो अब 19 हो चुके हैं। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर इस वक्त, जिनके पास 21 गोल्ड मेडल है। यानी भारत को अगर उज्बेकिस्तान के साथ टक्कर में आना है, उनको रिप्लेस करना है चौथे स्थान पर, तो कम से कम हमें उज्बेकिस्तान के 21 गोल के बराबर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि भारत इस समय पांचवें स्थान पर कुल मिलाकर 81 मेडल्स कमा चुका है, जिसमें से ऑफ कोर्स एज आई सेड 19 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सो ओवरऑल सो फार अपॉलॉजीज ओवर देयर, 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, विच मेक्स इट 80 मेडल्स इन टोटल फॉर इंडिया। यानी भारत को इस वक्त चाहिए कि वो उज्बेकिस्तान के साथ अगर बराबरी करना चाहता है तो उनको कम से कम 3 मेडल और कमाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से आज का दिन समाप्त होता है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत चौथे स्थान पर इस एशियन गेम्स में अपना सफर समाप्त कर पाए। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 2:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

0: 魔王お
1: い、
0: パリポトナデ
1: ヤバラッテ
0: ヤリポトナデ

0: ఆగిపోమన్నాడో
1: ఎవరేంటి?
0: పారచిమన్నాడో
1: ఎవరేంటి?

0: జపాన్ లో జరుగుతున్న 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్ ఇప్పుడు.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచీ నగోయా.
2: స్వాగత హై దోస్తో ఆప్ సబ్కా ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 పర్ తాజా అప్డేట్ కే సాత్. ఘడీ కి సుయి మే 2:30 బజ్ గయే హై ఔర్ ఆజ్ కి సబ్సే ఖాస్ బాత్ హై కి గోల్డ్ మెడల్ కి హ్యాట్రిక్ లగ్ గయి. జీ హాం, 3 గోల్డ్ మెడల్ భారత్ నే అబ్ తక్ జీత్ లియే హై, లేకిన్ ఆనే వాలే 1 ఘంటే మే కుచ్ ఔర్ పదక్ భారత్ కి ఝోలీ మే ఆ జాయేంగే. ఉసీ కే బారే మే సబ్సే పెహలే మే ఆప్కో బతాఊంగా. కుష్తీ కే ముకాబలే శురూ హోంగే ఔర్ అగలే 1 ఘంటే మే 3 బేహద్ మహత్వపూర్ణ ముకాబలే హై. कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन, जैसा मैंने बताया, जारी है. भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे. 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में ताजिकिस्तान के अयाल बेलुस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है. अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर है. वहीं मौजूदा रैंकिंग अमन की बात करें 20 है. वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग है, वहां अंतिम पंघाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए. अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी. सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी. अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे. अंतिम पंघाल जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा. उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है, जापान की क्वे का मोए, उनसे सामना होगा, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट. हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था. वहीं 2 और मेडल आने वाले, जिनके बारे में बता दूं. दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला, सागर जगलान रेपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई. कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला. जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया, हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका. हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी. यानी अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है.
3: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा. तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे, दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में. और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन आज द गोल्ड. इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटिजेंट के अंदर, 2 गोल्ड लेकर आया भारत. आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज़ ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप. एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई. अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर, ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स. उसमें हसन नवाज को 2 बार जीवन दान भी मिला, इसी वजह से पाकिस्तान शायद 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेस द टारगेट. ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा. दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल से. यहां पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय बिकमिंग बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026. ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया था तो वो 2002 में था, जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे. और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा, अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता. वही आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया. दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफकोर्स इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा दीवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑल्सो शाहिद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का. क्या लास्ट डे इंडियन पार्टिसिपेशन का?
2: जी बिल्कुल, लास्ट डे, अभी कई मेडल आने बाकी है. कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता. ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी, जो 9 साल तक लगातार अजेय थी. 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी. 155 मुकाबला

0: ने लगातार जीता था 57 किलोग्राम वर्ग में। उत्तर कोरिया की विश्व पदक जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको यह भी बता दूं इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाए दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं, आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: बहुत शानदार अमन सहरावत ने प्रदर्शन किया ओलंपिक मेडलिस्ट ने, आज क्या कमाल की कुश्ती लड़ी है, पीछे होते हैं आगे होते हैं इस तरह से लगातार उठा पटक के बाद ये फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आया। 57 किलोग्राम की कुश्ती थी, अमन सहरावत ने एशियन गेम्स के जो आज का फाइनल मुकाबला था शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की फ्रीस्टाइल के 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल की शुरुआत अमन के पक्ष में रही, उन्होंने मुकाबले में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग ने जोरदार वापसी की और स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया। मुकाबला जो था निर्णायक मोड़ तक पहुंचा और आखिरी मिनट में अमन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पर अमन ने अपनी असली ताकत दिखाई। मुकाबले में करीब 1 मिनट बाकी रहते ही उन्होंने शानदार टेकडाउन लगाया, चोंग सोंग को नीचे गिराकर अंक हासिल किया और देखते ही देखते स्कोर 11-7 पहुंच गया। इसके बाद अमन ने अपनी बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अमन का दिन सिर्फ फाइनल तक पहुंचना ही नहीं था, उन्होंने जो आज मुकाबले जीते वो कमाल के मुकाबले थे। उन्होंने इससे पहले जापान की यामातो ओगावा को 20-9 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदाद एतानोव को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने जबरदस्त वापसी की और ताजिकिस्तान के एयाल बोलेस्वेस्की के खिलाफ राउंड में जो पहला राउंड था 2-6 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने अगले राउंड में 12 अंक बटोरते हुए 14-8 से जीत दर्ज कर ली। और आज का मुकाबला क्या शानदार मुकाबला था, यहां पर अमन ने दिखाया क्यों ओलंपिक मेडलिस्ट, अमन ने दिखाया क्यों वो चैंपियन की कुश्ती लड़ते हैं, क्यों एक चैंपियन पहलवान है, क्योंकि पीछे जब होते हैं वहां से चिंता की लकीर जरूर कोच के चेहरे पे थी, चिंता की लकीर भारतीय दर्शकों पे थी, लेकिन जब वापसी करते हैं तो बैक टू बैक पॉइंट हासिल करते हुए मुकाबले को जीत लेते हैं और भारत के जो झोली है उसको स्वर्ण पदक एक और झोली डाल देते हैं और भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 20 तक पहुंचा देते हैं। साक्षी
1: जी शाहिद, थैंक यू सो मच एंड वी गिव यू अ क्विक अपडेट आल्सो नाउ एज टू हाउ हैज द डे बीन सो फार फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स जो आज के दिन में अब घटित होने वाला है द इंपॉर्टेंट बिग गेम कमिंग अप इन हॉकी जहां हम देखेंगे इंडिया इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। में बात कर रही हूं भारतीय मेन हॉकी फाइनल मैच का। आपको याद दिला दे कल भारतीय महिलाओं ने डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना को 44 साल बाद इनफैक्ट कल हरा कर 44 साल बाद भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया एशियन गेम्स के मैदान में। और आज उम्मीद करेंगे कि भारतीय मेन मलेशिया को हराकर वो गोल्ड हॉकी में भारत के नाम करवाए। अ क्विक रैप एट हाउ द डे वेंट सो फार फॉर इंडिया आल्सो वी विल हैव अ लुक। सो फार इट्स बीन अ वेरी एक्शन पैक्ड डे फ्रॉम एन इंडियन एंगल। इन आर्चरी 17-year-old कुमकुम मोहत प्रोड्यूस्ड रिमार्केबल परफॉर्मेंस टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड मेडल। हर विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। एंड हम इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इंडिया आल्सो सिक्योर्ड अनदर आर्चरी मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। नीरज चौहान डिफीटेड कंपैट्रियट धीरज Bamba Devara 6-4 in the bronze medal match after both Indians had fallen short in the respective semi-finals. Dheeraj had earlier lost 3-7 to South Korea's Lee Woo-seok, while Neeraj went down 1-7 against Japan's junior Nakanishi. And finally, two Bharati archers came in front of Bazi Mar gaye. Neeraj apne paksh mein aur unhone वहां से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गोल्फ में भी एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जहां प्रणवी उर्ज वन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले गोल्ड मेडल। शी फिनिश्ड द 4-round कंपटीशन एट 15 under par 1 stroke अहेड ऑफ चाइनाज जिन रोंग एंड सिंगापुर शेनन टान। एंड फाइनली जैसे अभी आपको शाहिद ने रेसलिंग करने बताया, क्रिकेट के अंदर आज हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर। बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेन्स टीम गेटिंग अस द गोल्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026.
0: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है। भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस कैपनाओ के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ सागर का एशियन गेम्स में जो अभियान था 4th स्थान पर समाप्त होगा। यहां उम्मीद की जा रही थी कि सागर जगलान भारत के पदकों की जो संख्या वहां इजाफा करेंगे, लेकिन अभी दो कुश्ती बाकी है, अंतिम पंघाल की कुश्ती बाकी, दीपक पुनिया की कुश्ती बाकी। यहां उम्मीद करेंगे कम से कम यहां पर अंतिम पंघाल जो खिताबी मुकाबला लड़ेंगी, स्वर्ण पदक का मुकाबला लड़ेंगी, वहां उम्मीद है वो एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। वहीं दीपक पुनिया कांस्य पदक का मुकाबला लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे वहां भी वो कामयाब हों।
1: जी एंड बिफोर वी रैप अप, क्विकली गिविंग यू अ मेडल टेबल काउंट आल्सो। भारत इस समय 5वें स्थान पर है, कुल मिलाकर 82 मेडल्स 20 गोल्ड 26 सिल्वर 36 ब्रॉन्ज के साथ भारत और मलेशिया का गोल्ड मेडल का मुकाबला हॉकी में अब शुरू होने जा रहा है। देखेंगे अगर यहां से भारत जीता तो एक और गोल्ड भारत के नाम होगा एंड वी स्टैंड टाइड इन दैट केस विद उस

0: पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए हमें 70 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या भारत ये स्वर्ण मेडल जीतता है इस मुकाबले में कि नहीं। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ जुड़ेंगे 1 घंटे बाद 4:30 बजे विद द लाइव अपडेट्स वंस अगेन।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

చిన్న ఓటమి అడ్డొస్తే మరి నెక్స్ట్ ట్రైల్ కి చకచక దూకేరా.

0: నా దగ్గర మందుంది, ఏ బుజ్జవ్వ.
1: ఏందో అది,

రెయిన్బో 101.9.

0: द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1. जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट ओवर भी नहीं हुआ है. फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और भारत ने, अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर इनफैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चली रहा है. वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट. भारत की तरफ से बता दूं कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 गोल करवाए थे. वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 गोल करवाया. द मैच इज स्टिल ऑन. वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग लीड.
1: बिल्कुल, 2 गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आ सकता है. हॉकी की जैसा आपने बात की, भारत यहाँ पे लीड पे. दूसरा जो आपने बताया कुश्ती के मुकाबला एक बाकी, जी हाँ, उस मुकाबले में भी अंतिम पंघाला अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा. लेकिन हाँ, एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में. भारत के दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था, वहाँ कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया. दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 अंक गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है. इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में रजत पदक हासिल किया था. इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे, जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा.
0: जी, एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. व्हेन इट कम्स टू सीइंग आर इंडियन प्लेयर्स, आर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना, सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आर इंडियन गोल्फर प्रणवी उर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026. दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट. द लास्ट टाइम एन इंडियन वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ वॉज शिव कपूर 2002 में. जी हाँ, और आपको ये भी बता दे कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट, मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स की, उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है. आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स. इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ यीजिन बाय अ शूट ऑफ एंड देयरबाय वी सॉ हर ब्रिंगिंग द कोवेटेड गोल्ड क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर इंडिया.
1: जी, एक और कांस्य पदक भारत के खाते में आते आते रह गया है. सागर जगलान अपना कांस्य पदक का मुकाबला हार गए. वहीं अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. जहां अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया का हान चोंगसोंग को 11-7 से हराया. मुकाबले की शुरुआत में अमन 4-1 की बढ़त बना ली थी लेकिन चोंगसोंग ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया और आखिरी मिनटों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया. लेकिन दबाव के इस पल में अमन ने शानदार टेकडाउन लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और स्कोर 11-7 करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया.
0: जी, और आर्चरी के अंदर ही आपको ये भी बता दे कि हमने देखा कि कैसे 2 भारतीयों का भी आज एक मुकाबला हो गया पर द ब्रॉन्ज मेडल. मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा की, जिसमें नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि 2 भारतीय थे. द गुड न्यूज ऑफ द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वॉज नीरज. एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी, जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026. इन द वुमेन्स 67 kg राउंड ऑफ 16 एंड टैक्वांडो, ज्योति यादव आल्सो लॉस्ट टू कनलक चोनकोलिन 0-2 एंड thereby भारत की कैंपेन इस स्पोर्ट के अंदर आके खत्म हो गई.
1: जी बिल्कुल, और भारत अब जो मेडल टेबल उसके चौथे पायदान पे पहुंचने के बेहद करीब है. देखना होगा क्या वहां पहुंच पाता. उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड, भारत के 20 गोल्ड है. अभी 2 गोल्ड भारत के पक्ष में आ सकता है कुश्ती और हॉकी से. देखना होगा अगले 1 घंटे में क्या कुछ घटित होता है. तस्वीर साफ हो जाएगी, जरूर बताएंगे. फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया. अभी

0: జపాన్ లో జరుగుతున్న 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్.
1: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashvani. Main hu Sakshi Mandwal. Mere saath is waqt yahan par maujood hai Mohammad Shahid Azmi. Hum lekar aa gaye hain aapke liye shaam ke 5:30 baje ki live updates of the ongoing Asian Games 2026. So dosto aapko is update ko shuru karne se pehle bata de ki Bharat ka safar Asian Games 2026 ke andar aakar ab officially samapt ho chuka hai. Ji haan, Bharat ke sare sporting events ab yahan par aakar samapt ho gaye hain aaj. Aur chaliye aapko sabse pehli और सबसे बड़ी खबर देते हैं आज के दिन की, जिसपे आज भारत ने अपने एशियन गेम्स का सफर समाप्त किया, वो है एक मीठे से गोल्ड मेडल के साथ. जी हाँ, जो कि आया हॉकी में, जहां भारत ने मलेशिया को 5-1 से आज हरा दिया. एंड दिस इनफैक्ट मार्क्स अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द डिपेंडिंग चैंपियंस, लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज बैक टू बैक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम. लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गॉट अस द गोल्ड यस्टरडे बाय डिफीटिंग द डिपेंडिंग champions China 1-0, and as a result this is for the first time when both the men and women's hockey team have gone on to win the gold in the Asian Games. A lot of records being broken out there, milestones being set also with

0: this win, now India have booked a place for the LA 2028 Olympics, the big one. Quickly taking you down through the journey of who scored the goals for India. Harmanpreet Singh scored the goal in the 11th minute, penalty corner conversion. Then Jugraj Singh in the 23rd minute, Hardik Singh, Shilanand Lakra, and finally in the 57th minute, Harmanpreet Singh once again came back to convert a penalty corner. Malaysia ki taraf se Shilo Silverius ne sirf ekloota goal score kiya. 5-1 se Bharat ne jab Malaysia ko haraya, pehle quarter mein 1-1 ki barabari ho gayi thi. Dusre half time mein humne dekha ki Bharat ne ek aur goal se badhat banayi. Third quarter mein Bharat ne fir se ek aur goal se badhat banayi aur finally last quarter ke andar Bharat ne 2 goal maar ke 5-1 se Malaysia ko aaj hara diya.
1: Bilkul hara diya aur yahan par ek padak ki aur ummeed thi antim pangal se ki gold layenge, लेकिन वो गोल्ड से चूक गई। कुश्ती में भारत के लिए अंतिम पंघाल ने आज की अंतिम कुश्ती लड़ी और रजत पदक जीत लिया। महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो फाइनल मुकाबला था अंतिम को जापान की मोए क्योका के हाथों 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में अंतिम 0-2 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे पीरियड की शुरुआत में उन्होंने एक अंक हासिल कर वापसी की कोशिश की। हालांकि क्योका ने इसके बाद टेकडाउन करके मुकाबले के अंतिम क्षणों में 4 अंक बनाते हुए अपना जो गोल्ड मेडल था अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स में अपना यह दूसरा पदक जीता। इससे पहले हांगझाऊ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जापानी पहलवान ने आज दिखाया वो शानदार डिफेंस कर रहे थे। हालांकि पहला हाफ दोनों पहलवान डिफेंसिव कुछ अंदाज में खेल रहे थे, रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ जब दूसरा हाफ शुरू होता वहां अगर कोशिश करती अंतिम पंघाल पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन जापानी पहलवान ने न सिर्फ रक्षात्मक वहां पर कुश्ती लड़ी बल्कि पॉइंट भी हासिल किए थे। अगर बता दूं जैसा साक्षी ने बताया भारत का अभियान खत्म हो गया, तो भारत का जब अभियान खत्म हो गया तो इसी समय कुश्ती का भी अभियान खत्म हो गया और अंतिम जो मुकाबला था वो कुश्ती का ही मुकाबला था। जहां अब बता दें भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल में 3 भारत ने पदक जीते, ग्रीको रोमन में 2 और महिला कुश्ती में भारत ने 1 पदक हासिल किया। अगर पदक विजेताओं की बात कर ले तो अमन सहरावत ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सुजीत कलकल ने भी गोल्ड मेडल जीता, यानी दोनों गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल कुश्ती में। वहीं पर नितेश और अंतिम पंघाल ने रजत पदक हासिल किया। नितेश ग्रीको रोमन के पहलवान है, अंतिम पंघाल इसके साथ साथ रजत पदक हासिल करती, जबकि दीपक पुनिया फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतते हैं, जबकि सुनील कुमार ग्रीको रोमन में कांस्य पदक हासिल करते हैं। यानी 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय कुश्ती का अभियान खत्म हो गया। पिछले अगर एशियन गेम्स की तुलना करें तो इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन, हालांकि महिलाओं ने कुछ हद तक निराश जरूर किया है।
0: जी, एंड द हाईएस्ट इवेंट, और शुड वी से द इवेंट दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया वाज एथलेटिक्स, जिसने कुल मिलाकर 24 मेडल भारत को दिलवाए हैं इस एशियन गेम्स 2026 में, जिसमें से 1 गोल्ड आया, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज मेडल। जो गोल्ड मेडल आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट, इट वाज द बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ गर्ल्स आउट देयर। वुमेन्स 4x400 मीटर रिले के अंदर आया था, जहां भारतीय वुमेन एथलीट्स ने हिस्ट्री रच दी। पहली बार 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को गोल्ड दिलाकर उसके बाद सिल्वर दिलाने में हमने देखा गुलवीर सिंह मेंस 10,000 मीटर में, गुलवीर सिंह मेंस 1500 मीटर में भी सिल्वर लाए, सर्वेश मेंस हाई जंप में लेकर आए, मेंस जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह थे, मेंस लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर थे, मेंस मैराथन में सावन बरवाल, मेंस शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह धूर और वुमेन्स लॉन्ग जंप में एन सी सोजर भारत के लिए सिल्वर मेडल्स लेकर आए। भाई ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो मेंस 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत की टीम ने ब्रॉन्ज जीता। कुल मिलाकर जो ब्रॉन्ज मेडल्स भारत को मिले थे आर्च एथलेटिक्स के अंदर दोस्तों, वो रहे 14, जिसमें हमारे हैं गुलवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, रोहित यादव, सीमा हरिता इन वुमेन्स 200 मीटर, पारुल चौधरी इन वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस, प्राची, विद्या रामराज, पारुल, पूजा, बरानिका, इलांगजोवन और मनप्रीत कौर। ये डिटेल्स हम लेकर आपके लिए और आएंगे, लेकिन आपको एक गुड न्यूज ये भी दे दें कि भारत ने अब एशियन गेम्स का सफर अपना फिलहाल के लिए 5वें स्थान से 4थे स्थान पर अभी अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, इंडिया प्रेजेंटली स्टैंड ऑन द 4th स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 85 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 21 गोल्ड मेडल्स, 27 silver, 37 bronze. More on this we'll bring to you in the next live update at 6:30. Thank you so much for now for tuning in. This is me, Sakshi Mandwal, and Mohammad Shahid Azmi saying goodbye for now.
2: Asian Games 2026, IG Nagoya.

0: రెయిన్బో 101.9.
1: మీరు వింటున్నారు ఎఫ్ఎం రెయిన్బో తాజా ట్యూన్స్.

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे

ఎవరు రండి, వెళ్ళిపోతున్నది ఎవరు రండి.

0: అది పొమ్మన్నాడో
1: ఎవరేంటి
0: పారచిమన్నాడు.

0: एफएम रेनबो, कभी कभार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, हमारा भी हो जाता है दोस्त। और दोस्त, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टॉपिक। आज का टॉपिक जो है कि अगर कोई पब्लिक हॉलिडे आपको डिक्लेयर करना पड़े तो वो कौन सा होगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026। आप सबको बता दें कि भारत का ऑफिशियली जो सफर था 2026 के एशियन गेम्स में अब आकर समाप्त हो चुका है। जी हाँ, ऑल द इवेंट्स हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड फॉर द इंडियन कंटिंजेंट इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड विद दैट इंडिया हैज फिनिश्ड देयर प्लेस ऑन द फोर्थ स्पॉट इन द मेडल टैली। जी हाँ, चौथे स्थान पर भारत ने अपना सफर मेडल टेबल पे खत्म किया है। कुल मिलाकर भारत के पास है 85 मेडल्स, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। द डे स्टार्टेड फॉर इंडिया टुडे ऑन अ स्वीट नोट। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गोल्ड आया गोल्फ से, जहां पर एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बनी। उसके बाद आर्चरी से आया, फिर क्रिकेट ने हमें दिया और फाइनली हमें हॉकी ने गोल्ड देकर दिन की समाप्ति भी करी। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेसलिंग में भी हमें आज एक गोल्ड मिला है। इस सब के बारे में तो शायद आपको बताएंगे, बट मैं आपको एक सरसरी नजर से लेकर चलती हूँ कि मेडल टेबल के अंदर जो हमारे मेडल्स आए हैं वो किस इवेंट में कितने कितने आए। आर्चरी के अंदर हमने पाए हैं टोल कुल मिलाकर 9 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। एक ऐसा ये स्पोर्ट रहा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने कमाए अपने लिए, 24 टोटल। बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। क्रिकेट में महिलाएं और पुरुष दोनों ने ही T20 क्रिकेट के अंदर 2 गोल्ड भारत को एशियन गेम्स में दिलवाया। गोल्फ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, हॉकी में 2 गोल्ड। महिलाएं और पुरुष दोनों ने भारत को अब की बार गोल्ड मेडल दिलवाया। कबड्डी में 2 गोल्ड, कुराश में 1 ब्रॉन्ज, मिक्स मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज, सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, सेपेक्टक्रो में 1 ब्रॉन्ज, शूटिंग में कुल मिला के 15 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज।
3: जी, और आज 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में आए। सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी की। कुमकुम अनिल मोहोद ने महिला रेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कुमकुम ने कोरिया की ओ एन जिन को 5

0: 6 के यानी 6-5 से कड़े मुकाबले में शिकस्त दी और हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। यहाँ पर मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया, महिलाओं ने भी खिताब अपने नाम किया, पुरुषों ने खिताब अपने नाम किया। जिस तरह क्रिकेट में 2 पदक आए हैं गोल्ड, इसी तरह हॉकी में 2 गोल्ड आए हैं। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने जापान की मोए क्योका को 1-9 से, उनसे जो मुकाबला था क्योका से अंतिम पंघाल को 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भारत के नजरिए से देखा जाए तो जब भारत के तमाम खेल खत्म हो गए, आज के दिन 3 स्वर्ण पदक बेहद महत्वपूर्ण है।
1: जी, और क्योंकि हम आपको मेडल टेबल में बता रहे थे तो थोड़ा आगे चलते कुछ और इवेंट्स जो बचे हुए हैं उसमें है सॉफ्ट टेनिस जिसमें 1 ब्रॉन्ज आया, स्क्वॉश में हमने 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज कमाए हैं, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में कुल मिलाकर 6 मेडल्स भारत ने कमाए, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज और वुशू में 1 सिल्वर भारत ने कमाया। तो इसलिए भारत ने अपना 2026 का एशियन गेम्स का सफर कुल मिलाकर 85 मेडल्स पर समाप्त किया, 21 गोल्ड एंड होपफुली व्हेन टुमारो देयर इज एन इवेंट उज़्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमारे साथ 21 गोल्ड पर ही टाइड है। उज़्बेकिस्तान का भी एक और इवेंट बचता है कल इक्वेस्ट्रियन के अंदर, तो देखना होगा कि क्या इक्वेस्ट्रियन के अंदर उज़्बेकिस्तान कल गोल्ड अपने लिए ला पाता है कि नहीं। चांसेस उसके कैसे हैं, हाईली अनलाइकली कह रहे हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट्स खासतौर से, बट वी विल हैव टू सी टिल इट गेट्स ऑफिशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को माना जाएगा शायद कि हम चौथे स्थान पर ही मेडल टेबल पर फिनिश करेंगे,
0: होप कि हम चौथे स्थान पर खत्म करेंगे। लेकिन हम उन खिलाड़ियों की भी बात, श्रोताओं तक बात पहुंचा कि जिन्होंने एक से ज्यादा भारत के लिए मेडल जीते। भारत की बात करें तो आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, 3 पदक इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है। नीरू ने निशानेबाजी ट्रैप व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ट्रैप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं कुमकुम मोहोद ने रिकर व्यक्तिगत और टीम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड 3 इसके अलावा सहित 3 पदक जीते, जबकि निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 2 रजत पदक समेत 3 पदक जीते हैं। यह भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक से ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे बाद क्या कुछ और नया ताजा आता है और भारत का क्या कुछ ओवरऑल प्रदर्शन रहा, हम अगले 1 घंटे बाद आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 7:30 बजे तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: वेलकम बैक, यू आर ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो एट्स क्लोज टू योर लाइफ। కలర్స్ ఆఫ్ ఇండియా వెంటనే విత్ యూర్ జోక్ డాక్టర్ దీపా నిదాన కవి. సో జెన్సీస్ లలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి, పేరెంటింగ్ లో కూడా చాలా మార్పులు జరగాలి అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు. జనరల్ గా ఈ జెన్సీస్ కి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నవి వాళ్ళ వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కావచ్చు, టెక్నాలజీ ప్రభావం వాళ్ళపైన కావచ్చు, అండ్ భావ వ్యక్తీకరణ వాళ్ళకి లేకపోవడం కావచ్చు. అంటే ఓవర్ గా వాళ్ళు వాళ్ళ బౌండరీస్ ని కోరుకుంటున్నారు. సో ఇలాంటి టైంలో యాజ్ పేరెంట్స్ ఎలా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? అట్లీస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఆర్ ఒక ఫ్రెండ్లీ ఎన్వైర్మెంట్, ఒక స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని తల్లిదండ్రులు పిల్లలపైన ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది. బికాస్ తల్లిదండ్రులు అధికారం చూపించడం ఆపేసి పిల్లలతో స్నేహితులుగా ఉన్నారనుకోండి, కొంచెం వాళ్ళ కోణంలో మనం వెళ్ళి మనం ఆలోచించి అర్థం చేసుకోగలిగితే మేబీ వాళ్ళు కొంచెం మన దారిలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ కూడా, అంటే ఎటువంటి తీర్పులు లేదా భయపెట్టడం కాకుండా పిల్లలు వాళ్ళ భావాలని స్వేచ్ఛగా మనకు మనతో పంచుకునే అవకాశాన్ని మనం ఇస్తే బాగుంటుంది. ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నాం బట్ స్టిల్ పిల్లలు ఇలాగే ఉన్నారు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. స్టే విత్ మీ.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम 2026 की आज की अंतिम अपडेट में। आज बात करेंगे भारत ने क्या कुछ हासिल किया, इस एशियन गेम्स में क्या कुछ भारत की उपलब्धियां रही और आज के दिन क्या कुछ खास रहा एशियन गेम्स में। जैसा कि आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहा, भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जबकि अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया। जबकि इस प्रदर्शन के साथ भारत के पदकों की संख्या 85 कुल हो गई जिनमें 21 स्वर्ण 27 रजत शामिल है। कांस्य पदक जिस तरह से भारत ने आज जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं, यकीनी तौर पर कह सकते हैं भारत की जो मेडल टैली उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला साक्षी
2: जी। एंड अ क्विक अपडेट आल्सो एट हाउ द डे स्टार्टेड, देयर वर 2 अदर गोल्ड मेडल्स इन दिस लिस्ट ऑफ मेडल्स दैट इंडिया वाज एबल टू फिनिश विद ऑन द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। वन वाज एट द स्टार्ट ऑफ द डे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ वेयर प्रणवी उर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। अलोंग विद दैट प्रणवी उर्स, अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर ऑल्सो claimed the silver medal in the women's team event in golf. Let us also tell you all that no Indian has won an individual gold in golf since Shiv Kapoor in 2002. So it was a 24-year-old long wait that finally came to an end when Pranavi Urs was finally able to get us the gold in the Asian Games 2026. Along with that, the big event of the day that happened was in the world of cricket, where it was not just the women who bought us the gold but also the men who clinched the gold in the Asian Games today by defeating Pakistan comfortably by a margin of 19 runs. Having won the toss and choosing to bat first, India posted a mammoth score of 211 runs, while Pakistan in return of chasing the target was only able to chase and put on board 192. Hence a good day for India overall, Shahid, with wrapping of the last day.
1: इस एशियन गेम्स में अगर हम मल्टीपल मेडलिस्ट की बात करें, जो वर्ल्ड लेवल पर हम एशियन गेम्स के मेडलिस्ट की बात करें, तो सबसे ऊपर है जो चीन की मेडलिस्ट है, चीन की तैराक है जांग झांगशुआ, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ऊपर बनी है। उनके नीचे बात करें उनके ही देश की तैराक यू इतिंग है, जिन्होंने 5 गोल्ड समेत 7 पदक जीते। इसी तरह चीन की ही तैराक जो तीसरी तैराक है ली बिंगजी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्चर कुमकुम मोहोद के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत है, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 3 पदक जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर बने। वहीं अगर बात करें तीसरी खिलाड़ी की बात करें तो भारत जो तीसरे खिलाड़ी कुमकुम मोहोद के अलावा बात करें तो तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम जिसने तीसरा स्थान

0: సూపర్ మచ్చి
1: ఎంగ వెంకయ్యల.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: दोस्तों 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपका दोस्त आरजे उसामा। दोस्तों नैरंग यानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, एहसासात के मुख्तलिफ रंग, फ़िक्र ख़याल के मुख्तलिफ रंग और मौसीकी व अदब की खूबसूरत दुनिया के रंग। ये वो प्रोग्राम है जहां कभी आपसे बात होगी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की, कभी सेहत से मुतालिक मुफीद मालूमात आप तक पहुंचाई जाती है, कभी शायरी के रंग बिखरते हैं, कभी ख्वातीन से जुड़े अहम मौजूआत पर गुफ्तगू होती है और कभी मौसीकी के सुरीले नगमे आपका दिल छू लेते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए रोज़मर्रा की मसरूफियात को एक तरफ रखते हैं और शामिल हो जाते हैं नैरंग की इस खूबसूरत महफिल में, जहाँ हर लम्हा एक नया रंग लिए हुए है, हर बात में एक नया एहसास है और हर नगमा अपने अंदर एक खूबसूरत दास्तान समेटे हुए है। दोस्तों और हमारे मौज़ सामीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आइए हम आपको नैरंग में आज पेश होने वाले प्रोग्राम की तफसील बता देते हैं। सामीन, प्रोग्राम का आगाज़ होगा हर्फ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी सैयद मंजूर अहमद की। उसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जामे, खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी नगमे, और प्याम शब के साथ नए रंग इख्तिताम पजीर होगा। तहरीर पेशकश होगी जैदी साहब की। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हर्फ ताबिंदा से। तहरीर पेशकश है सैयद मंजूर अहमद की। तो लीजिए समाप्त कीजिए हर्फ ताबिंदा।
1: सफ़र यानि ट्रैवल एक कदीम सरगर्मी है। सदियों से लोग सफ़र करते हैं, नकल मकामी करते हैं और इसी सरगर्मी से इंसान अपने आप को बेहतर और पुरसकून महसूस भी करता है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहां हर कोई मसरूफ़ नज़र आता है, हर वक्त दबाव, थकन और फिक्री उलझनों में घिरा हुआ नज़र आता है, वहीं हम अक्सर ख़ुद को भूल जाते हैं। ऐसे में सफ़र एक बेहतरीन तरीक़ा है ख़ुद को अनवाइंड करने का, यानी पुरसकून करने का, ख़ुद को दोबारा दरियाफ्त करने का। सफ़र सिर्फ मकामात देखने का नाम नहीं बल्कि इसके कई फ़ायदे भी हैं। यह जहन को ताज़गी देने का ज़रिया है, दिल की उलझनों को सुलझाने का वक्त देता है, ज़िंदगी के शोर से दूर अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देता है। सफ़र हमें खुद एहतसाबी का मौका भी फराहम करता है। जब हम रोज़मर्रा की इंसानियत से निकलकर किसी नई जगह जाते हैं तो हम अपनी परेशानियां कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और एक नया नज़रिया, नया जज्बा लेकर वापस आते हैं। सफ़र से इंसान पुरसकून महसूस करता है, यानी नई फ़िज़ा, कुदरती मनाजिर और ताज़ा हवा, ये सब जिस्म को सुकून देते हैं। जब हम फितरत के करीब होते हैं

0: 101.9.
1: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

जी सामीन, ट्रैफिक रूल फॉलो करें और ख़ुद को महफूज बनाएं और दूसरों को भी महफूज करें, क्योंकि हमेशा याद रखें, घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसलिए सलामती के साथ घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बारी है नगमों के सफ़र पे रवाना होने की। मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा से। दोस्तों, आज नगमों और प्यार भरे गीतों के बीच में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ और अनटचेबिलिटी के बारे में भी। मगर आप सोच रहे होंगे ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग ही टॉपिक है, इन दोनों पर एक साथ बात करने का क्या मतलब है? तो सामीन, मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बात यह है कि 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वाइल्ड लाइफ वीक है, और इसके अलावा 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक एंटी अनटचेबिलिटी वीक भी मनाया जा रहा है। इसी वजह से आज हम इन दोनों उनवान पे बात करेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ क्या है? ये फितरत के खामोश मुहाफिज हैं। हमारी ये खूबसूरत दुनिया सिर्फ इंसानों का घर नहीं है। इस ज़मीन पर बेशुमार जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े और दूसरे जानदार भी हमारे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जंगलों में घूमते हुए शेर, पहाड़ों पर उड़ते हुए उकाब, दरियाओं में तैरती हुई मछलियाँ, दरख्तों पर चहचहाते परिंदे और ज़मीन पर रेंगने वाली नन्ही सी चींटी, ये सब हमारी कुदरती दुनिया का हिस्सा है। वाइल्ड लाइफ वीक यानी जंगली हयातियात का हफ्ता हमें इस कुदरती दुनिया की अहमियत याद दिलाने का एक खूबसूरत मौका है। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। पहले सुन लेते हैं एक प्यार भरा गीत, तो लीजिए समाप्त कीजिए।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं प्यार भरे फिल्मी नगमे। अभी आपने फिल्म दूध का कर्ज से ये नगमा सुना जिसे गाया था मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों, हम बात आज कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करिए, अगर हमारे जंगल खामोश हो जाएं, परिंदों की आवाज़ें सुनाई ना दें, तितलियां नज़र ना आएं, दरियाओं में मछलियां न रहें और जंगलात में जानवरों का वजूद ख़त्म होने लगे, तो क्या हमारी यह दुनिया वैसी ही खूबसूरत रह पाएगी? यकीनन नहीं। वाइल्ड लाइफ सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, यह हमारे माहौल के तवाज़ुन के लिए भी बेहद

जरूरी है। हर जानवर और हर जानदार कुदरत के निजाम में एक खास किरदार अदा करता है। कोई बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कोई कीड़ों की तादाद को काबू में रखता है, कोई मुर्दा जानदारों को ख़त्म करके माहौल को साफ रखने में मदद देता है। यानी कुदरत में कोई भी मखलूक बेमकसद नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यकीनन कुछ न कुछ निकलेगी खूबी, यकीनन कुछ न कुछ निकलेगी खूबी, बुरी शय देखिए अच्छी नज़र से।

की है, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब इस जिम्मेदारी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हम अपने घरों के आसपास दरख्त लगा सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, परिंदों के लिए गर्मी के मौसम में पानी रख सकते हैं, जंगली जानवरों को तफरी या खेल के लिए परेशान करने से बच सकते हैं, और सबसे अहम बात, हमें अपने बच्चों को जानवरों और परिंदों से मोहब्बत और उनका एहतराम का सबक सिखाना होगा, ताकि बच्चों को ये मालूम हो कि नहीं, जंगली जानवरों की भी अपनी एक इज्जत होती है और हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी अर्श क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति और दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी अर्श गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी अर्श हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruoning, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Tae-yong in the quarterfinals and China's Chu Zingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल

0: 58 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदलकर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6वें स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की

0: अब कितना भागी जानते हैं मेघा से।
1: इन सेलिंग 16 ईयर ओल्ड माही वर्मा फिनिश 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंजी इवेंट एज अ कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
0: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
1: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals. But India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
0: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
1: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutant has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10 meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years, and the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
0: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने।
2: दोस्तों, एशियन गेम में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी

लगन और अज़्म का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए न सिर्फ तमगे हासिल किए बल्कि आलमी सतह पर भारत की खेलों की सलाहियतों को भी उजागर किया। ये कामयाबियां सिर्फ तमगों तक महदूद नहीं हैं बल्कि ये मुल्क के नौजवानों के लिए हौसले और उम्मीद का पैगाम भी हैं। भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत हमें ये सिखाती है कि मुसलसल कोशिश, नज्म जब्त और खुद एतमादी के साथ मुश्किल से मुश्किल निशाना भी हासिल किया जा सकता है। एशियन गेम्स में भारत की ये कामयाबियां यकीनन आने वाली नस्लों को खेलों की जानिब मुतवज्जा करने और मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां हासिल करने की तहरीक देंगी। इन तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद और हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं। और साथियों, दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ की नगमों के बीच में, क्योंकि यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। तो वाइल्ड लाइफ पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर इस नगमे के बाद तो लीजिए समाअत कीजिए ये खूबसूरत सा हुब्बुल वतनी से मामूर ये नगमा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरेले गाता जा में सुन रहे हैं दिलकश, खूबसूरत और प्यार भरे फिल्मी नगमे। और हम नगमों के बीच में बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी वाइल्ड लाइफ की अहमियत के बारे में और वाइल्ड लाइफ हमारी ज़िंदगी के लिए भी क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, जंगली हयात यानी वाइल्ड लाइफ हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है, बाहमी इन्हिसार का सबक। जंगल में शेर भी ज़रूरी है और हिरन भी, उकाब भी ज़रूरी है और छोटी सी चींटी भी, बड़े दरख्त भी ज़रूरी है और नन्हे से पौधे भी। कुदरत हमें बताती है कि एक मजबूत दुनिया वही होती है जहाँ मुख्तलिफ मखलूकात एक दूसरे के साथ तवाज़ुन में रहती हैं। इसलिए वाइल्ड लाइफ वीक सिर्फ जंगली जानवरों के बारे में जानने का हफ्ता नहीं, बल्कि अपने माहौल, अपनी ज़मीन और अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचने का भी एक मौका है। तो आइए इस वाइल्ड लाइफ वीक पर हम एक छोटा सा अहद करें, हम फितरत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी हम नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंगली जानवरों और परिंदों को सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझने का इरादा और अज़्म करेंगे और जहाँ मुमकिन होगा अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा कदम ज़रूर उठाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जंगल महफूज होंगे तो जंगली हयात महफूज होगी, जंगली हयात महफूज होगी तो कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहेगा और कुदरत का तवाज़ुन बरकरार रहेगा तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। तो आइए इस वाइल्ड लाइफ वीक पर फितरत की इन खामोश आवाज़ों को सुने और शायद बोल जो शायद बोल नहीं सकती लेकिन हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में इनका बड़ा किरदार रहता है। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, उम्मीद कि आप समझ गए होंगे। और अभी सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा।

आशवानी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। उम्मीद के आपको मज़ा आ रहा होगा और आप इन नगमों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। अभी जो नगमा आपने सुना वो फिल्म मेरे सनम का था, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और नाज़रीन सामईन, हम बता दें आपको कि हम बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में। वाइल्ड लाइफ के वीक के बारे में हमारी बात तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि एंटी अनटचेबिलिटी वीक भी जारी है जो 10 अक्टूबर तक है। तो सामीन, अब इस एंटी अनटचेबिलिटी वीक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये वीक क्यों मनाया जाता है? सामीन, दरअसल एंटी अनटचेबिलिटी वीक बराबरी और इंसानी एहतराम का पैगाम देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, कभी कभी माशरे में कुछ ऐसी सोचें जड़ पकड़ लेती हैं जो इंसानों के दरमियान फासले पैदा कर देती हैं। ये फासले सिर्फ घरों और महलों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इंसान के दिल और उसके एहसास इज़्ज़त को भी मुतासिर करते हैं। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत भी एक ऐसी ही समाजी बुराई रही है जिसने सदियों तक बहुत से लोगों को इम्तियाजी सलूक और महरूमी का सामना करने पर मजबूर किया है। एंटी अनटचेबिलिटी वीक हमें यह याद दिलाने का मौका फराहम करता है कि इंसान की इज्जत उसकी ज़ात, बरादरी, पेशे या समाजी हैसियत से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से है। अल्ताफ हुसैन हाली ने क्या खूब कहा है, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा।

दोस्तों, ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जामे सुन रहे हैं खूबसूरत फिल्मी नगमे। अभी आपने फिल्म सीआईडी का ये नगमा सुना। आवाज़ थी शमशाद बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल एंटी अनटचेबिलिटी वीक के बारे में। इससे पहले हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर चुके हैं और अभी हमारी गुफ्तगू जारी है एंटी अनटचेबिलिटी वीक के बारे में। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर एक ही माशरे में रहने वाले कुछ लोगों को सिर्फ उनकी पैदाइश की बुनियाद पर दूसरों से कमतर समझा जाए, उनके साथ बैठने, खाने या मेल जोल पर पाबंदी लगाई जाए, तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है। इंसान ने तरक्की की, आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खला की बात करते हैं, लेकिन हकीकी तरक्की सिर्फ नई इमारतें बनाने का या नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने का नाम नहीं। हकीकी तरक्की उस वक्त होती है जब माशरे में हर इंसान को इज्जत, मौके और बराबरी का एहसास हासिल हो। भारत के आईन ने भी हमें मसावात और इंसानी वक़ार के उसूल को बुनियादी अहमियत दी है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, कानून अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन माशरती रवैयों में तब्दीली भी उतनी ही अहम है, क्योंकि इम्तियाज़ या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ किसी कानून से ख़त्म नहीं होता, बल्कि सोच बदलने से ख़त्म होता है, क्योंकि सोच की तारीकी रात की तारीकी से ज़्यादा ख़तरनाक है।

दोस्तों, इसी फिल्मी गीत के साथ गीतों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब पेश है प्याम शब। तहरीर व पेशकश है जनाब जैदी साहब की। लीजिए, समाप्त कीजिए।

जी दोस्तों, जिंदगी अपने अंदर बेशुमार रंग समेटे हुए है। कभी खुशियां हमारे दामन को भर देती हैं तो कभी मुश्किलात हमें कुछ नया सिखा जाती हैं। याद रखिए कि अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। इसी पैगाम के साथ मैं रंग इख्तिताम पज़ीर होता है। अगली बज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी।

0: पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking your calls on your market related queries, but do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 44 44 2331 0481 and 2371 7106, and of course do not forget to prefix 011 before these telephone numbers if you're calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn poochne ke liye aap dial kijiye 2331 44 44 2331 0481 aur 2371 7106. Delhi se bahar ke shrota in numbaron se pehle Delhi ka STD code 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार निशित और सभी आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस.
0: India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3%. And Wall Street wraps up week on mixed note.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारत की आर्थिक मजबूती पिछले दशक में हुए सुधारों के कारण हुई है. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट. सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3% गिरे और वॉल स्ट्रीट ने सप्ताह की समाप्ति मिश्रित रुझानों के साथ की.

0: Before you proceed, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि भारत की आर्थिक मजबूती और लचीलापन पिछले एक दशक में राजकोषीय अनुशासन, बुनियादी ढांचे में निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर सेवा वितरण व्यवस्था और लगातार किए गए सुधारों के कारण मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने जीएसटी दिवाला और दिवालियापन संहिता तथा चार श्रम संहिताओं के जरिए देश के आर्थिक ढांचे को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों के आर्थिक झटकों का सामना अपनी बुनियादी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखते हुए किया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार वैश्विक स्तर पर कर्ज बढ़ने के रुझान के बावजूद भारत का सामान्य सरकारी कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के 83.4% से घटकर वर्ष 2031 में 77.7% रह सकता है।
0: एंड वी आर जॉइंड इन बाय आवर फर्स्ट कॉलर फ्रॉम रत्नागिरी प्रिंस। प्रिंस, वेलकम टू द शो।
2: हेलो सर जी, मुझे एक सवाल पूछना था।
0: जी,
2: ये आईपीएफ में जो शेयर जाते हैं, ये शेयर कितने दिन में वापस रिटर्न आते हैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद? और दूसरा सवाल था कि मुझे अगर मेरे बैंक रिकॉर्ड में से डिविडेंड फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मेलिटीज है?
3: चलिए प्रिंस, मेरे ख्याल ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने दिन में शेयर्स वापस आते हैं। तो आपने प्रिंस, जब अगर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, नॉर्मली मेरा भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से संपर्क रहा। फंड के जो पूरा कार्य प्रणाली है उसको मैंने पीछे कुछ सालों में देखा था। तो जनरली होता क्या है निशित और प्राची, और मैं प्रिंस को बताना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है।

0: कागज को जमा कराने में, आपको पता ही होगा इसमें पुराने शेयर जिनके पड़े हैं वो वहां जाके जमा हो जाते हैं और वो उन लोगों को वापस दे दिए जाते हैं कागजी कार्रवाई पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद। तो एक दफे प्रिंस आपकी अगर कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो फिर वापस आने में समय नहीं लगता है, मेरे अनुमान से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो शेयर्स मिल जाते हैं। और आपने पूछा कि उनका पिछला अगर आपने डिविडेंड देखना है, तो अगर तो डिविडेंड क्रेडिट हो रहा है पर क्योंकि इन शेयर्स का बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से कोई लिंकेज भी नहीं होता है, तो इसमें प्रक्रिया नॉर्मली ये होती है कि हम जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उससे हम संपर्क कर उससे हम पता करके कि इसमें किस किस साल में कितना डिविडेंड मिला था, क्यों कंपनी भी इसको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है। तो अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में वो लोग आपको चेक करके बता सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर रहेगा अगर आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड नहीं बता रहा है तो आप कंपनी के रजिस्ट्रार से इस बात को संपर्क करके चेक कर सकते हैं। जी
1: And moving on, earlier today, during the inaugural address on the theme Resilience in an Age of Flux at the 5th Kautilya Economic Conclave, Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that economic resilience cannot be separated from social resilience and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Addressing the conclave, Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra said that price and financial stability cannot be seen in isolation from geopolitical and geo-economic fragmentation, trade restrictions, supply shocks, and technological disruptions. Mr. Malhotra stressed that the full potential of economic growth cannot be achieved without a stable and healthy financial system, adding that the Indian financial system is very resilient. However, the RBI governor also highlighted the need to remain alert to banking and financial stresses.
2: Our experience of the past 2 decades have offered us important lessons that banking and financial stresses can build overnight, but they will take years to resolve. It took us more than a decade to clean up the legacy of excessive lending and NPAs from the early 2000s. So we cannot afford to become complacent. The economic and financial costs of allowing vulnerabilities to build are simply too high.
1: Sharaji, talking of this economic conclave, this is the fifth edition. The first, of course, was held in 2022. Now, the very theme of this conclave was, the Indian economic ecosystem or the system at the flux point or the inflection point. Of course, it goes without saying that we are going through certain hard times like the West Asian crisis, the American higher bond yield, so on and so forth. So now from here on, of course, we would take up this thing later on in the program. The U.S. markets and other economies as well, they have been doing, if not exceedingly well, to some extent, in the positive territory they have been performing over the past at least a couple of years. What's actually ailing us and why is the Indian markets not showing up as it should have been?
0: Well, I think if you look at the markets over the last 4 years or so, the market hasn't been all that bad. I was looking at last 4 years. The market has, we were looking at about what I think a decent return year on year. But off late, I think West Asia crisis started in February. And since September 24, we've seen relentless selling on part of the FIIs and the FPIs. They were pillars of Indian markets. We all know they were holding very substantial equity as far as their share is concerned. And if such a major, I would say, stakeholder starts exiting the market, they weren't exiting because some of them said we are an expensive market, our valuations are high. Some of them moved to Taiwan, to Vietnam, to Korea, to Japan, some of them to China as well. But I think that is rotational money. And I feel this cycle in any stock market is usual. You do hit such patches. And I think it's a matter of time before the market would bounce back. Of course, subject to how the geopolitical and the geo-economic scenario evolves from here.
1: Right.
3: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी सभी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, नमस्कार सर।
0: नमस्कार अमित जी।
4: सर, मेरा प्रश्न है कि जैसे कहा जाता है नॉर्मली ट्रेंड इज ट्रेंड, ठीक है सर, बट ट्रेंड आपका है या डाउन का है, ट्रेंड रिवर्स करती है तो रिवर्सल ट्रेंड को हम कैसे पहचाने सर? और एक चीज सर और पूछेंगे सर, ऑप्शन में जो है जो टाइम वैल्यू होता है, ये टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, फॉर्मूला क्या है? धन्यवाद सर।
0: अमित, आपका पहला है कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे पता लगता है। देखिए, ट्रेंड रिवर्सल बहुत लोगों का ये सवाल होता है प्राची निशित, बहुत ही इंटरेस्टिंग
3: जी
0: सवाल है। हालांकि इनका जो दूसरा वाला सवाल है उसमें मैं बहुत खोल के

0: जवाब इनको नहीं देना चाहूंगा जानबूझ के, थोड़ा सा तो बताऊंगा। ट्रेंड रिवर्सल जब होता है, आपको एक दिन मार्केट मान लीजिए 4 दिन गिर रही है और एक दिन मान लीजिए मार्केट में निफ्टी की बात करता हूं 40-50-60 पॉइंट उठ गई, उसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं करते। ट्रेंड रिवर्सल जब कहते हैं जब ओपन इंटरेस्ट आपका बाइंग में धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, तो जब तक ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है तब तक हम उसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानते, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज्यादा चढ़ने के बाद गिरना एक टेक्निकल रैली होती है, एक टेक्निकल करेक्शन होता है, और बहुत ज्यादा गिरने के बाद चढ़ना एक टेक्निकल रैली होती है, इसको नॉर्मल बाउंस बैक कहते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सल अमित बहुत सारी उसकी पहचान होती है कि सस्टेन्ड आपको उसी मान लीजिए हरे निशान में लाल निशान में रोज बंद हो रही है जैसे आजकल है, तो सस्टेन्ड अगर हमें 3-4 अगले सेशंस में वो हरे निशान में बंद होती दिखाई दे और अच्छे अमाउंट से ओपन इंटरेस्ट बने, तब हम उसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। ऑप्शन के लिए मैं निशित और प्राची की इजाजत से, क्योंकि मुझे पीछे मालूम पड़ा था कि बहुत सारे लोग इसमें F&O ट्रेडिंग में थोड़ी बहुत जानकारी लेके आ जाते हैं और बहुत हाथ जला लेते हैं, अपने नुकसान हो जाता है। तो मैं अमित आपसे, आप तो नियमित कॉलर हैं, तो मैं आपसे सलाह दूंगा जब तक पूरी तरह से, और बहुत बड़ा पैसा चलता है, अब 10 में से 9 लोग गवाते हैं, ये सेबी का डेटा है, तो मैं तो यही सलाह देता हूं जब तक बहुत बड़ा पैसा है आपके पास, बहुत ज्यादा हाई टेक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी नहीं है, तब तक ऑप्शंस में इस तरीके से मैं टैन वैल्यू क्या है, बीटा अल्फा वो सब मैं आपको बता सकता हूं, एक तो वो लंबा डिस्कशन है, पर मैं आपको समेत अमित यही सलाह दूंगा कि ऑप्शन की बजाय आप निवेशक बनिए, आप इन्वेस्टर बनेंगे तो आप इसमें पैसा कमा पाएंगे। ऑप्शन वाले ज्यादातर जो है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से सट्टा आ जाता है, आप ऑप्शन चेन में जब जाते हैं कॉल लेते हैं पुट लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अमित ने मेरी बात को स्पोर्टिंगली लिया होगा और आपके हित में ही मैंने बात करी।
1: इनफैक्ट यू आर टॉकिंग ऑफ द टाइम डिके मोर देन द टाइम डिके, शरद जी इट्स लाइक द वैल्यू डिके हैपनिंग, यू नो।
0: नहीं टाइम देखिए, बताने को मैं जब आप ऑप्शन लेते हैं तो जैसे जैसे उसकी एक्सपायरी नजदीक आती है, चलिए आपने क्योंकि छेड़ ही दिया है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो उसकी जो वैल्यू मेल्ट होती जाती है, और कई दफे कीमत गेन होने के बाद भी, यानी कि उसकी कॉल बढ़ने के बाद भी आप देखते हैं कि आप नुकसान में आ जाते हैं। तो अमित आपके पर सवाल से ऐसा लग रहा है या तो आप अभी सीख रहे हैं, अगर सीख रहे हैं फिर तो ठीक है, पर सीख के अप्लाई जब ही करिएगा जब आप पूरी तरह से इसमें सक्षम हो जाए।
2: मुंबई से हमारे साथ भूपेंद्र जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: धन्यवाद मैडम, मेरा एकदम सिंपल लेमैन वाला क्वेश्चन है
0: जी।
3: SIP या म्यूचुअल फंड में जनरली जो सजेशन दिया जाता है प्रिंट मीडिया से या मीडिया से
0: जी,
3: लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए
0: जी,
3: लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन क्या है सर, मतलब कितने साल, 5 साल 2 साल 3 साल कैसे?
0: अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है कि लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होता है। नॉर्मली देखिए भूपेंद्र, लॉन्ग टर्म वैसे तो आपको आपकी जो NAV है वो लॉन्ग टर्म बताना शुरू कर देती है। आप ऐसा समझिए कि आपने मान लीजिए 10 रुपए पे कोई FPO उठाया और वहां से आपने SIP शुरू किया और वो 2-3 साल बाद 15 रुपए उसकी NAV हो गई, फिर 5 साल बाद उसकी 20 रुपए हो गई, तो लॉन्ग टर्म मैं इसको कोई, आपने सवाल अच्छा, वैसे लॉन्ग टर्म हम देखें तो SIP में हम 5 से 10 साल का मानते हैं अगर मैं एक स्टैंडर्ड बात करूं, पर मैंने इसको एक अलग नजरिए से भी देखा कि अगर आपको औसतन 12-15% रिटर्न पर एनम आ रहा है और वो लगातार आ रहा है, तो फिर तो चाहे 3 साल भी हो जाए तो हम उसको लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, आप जिसलिए आए थे कि आपका 10,000 लगाया हुआ अब 20-25,000 हो चुका है, तो वो भी एक डेफिनेशन है। पर नॉर्मली भूपेंद्र इसको ऐसा समझिए कि 5 से 10 साल का नजरिया SIP को, मैंने तो इसीलिए SIP को नाम भी भूपेंद्र दूसरा दिया है, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के, क्योंकि सब्र तो वाकई में चाहिए होता है, यहीं से शायद आपका सवाल भी निकल के आ रहा है।
2: SIP में खेल भी तो कंपाउंडिंग का होता है ना, कि जितने पैसे जितने वक्त तक वहां पर रहते हैं उस हिसाब से वो उसमें ग्रोथ होती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, क्योंकि वही पैसा वापस निवेश होता रहता है उसमें, और NAV पे नजर रहती है निवेशकों की, तो बहुत ही सब्जेक्टिव ये बात होती है कि लॉन्ग टर्म, किसी का 7 साल होता है, कोई तो 3 साल में बेसब्र हो जाता है, कोई 5 साल में भी, कोई कोई मैंने देखा है SIP के जो 10 साल तक अभी बोलते हैं हम और 10 साल करेंगे, तो ऐसे ऐसे भी निवेशक होते हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, पर हाँ 5 से 10 साल मैं इसको लॉन्ग टर्म मान के चलता हूं।
1: एंड बिसाइड्स द फन, वन कुड आल्सो गो फॉर द SIP इन गुड स्टॉक्स एज वेल।
0: एब्सोल्युटली हाँ, SIP खाली म्यूचुअल फंड का एक तरीका नहीं, SIP एक स्ट्रेटजी भी मानी जाती
1: है।
2: हमारे साथ कोलकाता से कौशिक जुड़ रहे हैं, महोदय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: सर मेरा 2 सवाल है
0: जी।
4: गुड इवनिंग,
0: अपने अपने रेडियो की वॉल्यूम कम कर दे प्लीज।
4: सर एक सवाल है कि हमारा जो सेलिंग हो रहा है अभी मार्केट में
0: जी,
4: तो आवर GDP इज ग्रोइंग अप्रॉक्स 7% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट स्टिल देयर आर सेलिंग
0: जी,
4: तो

0: can be done so that the FPIs and FIIs are brought back to India, Indian markets? ek sawal hai. Dusra sawal hai ki amid the war, US Iran, if there is Democrat agar jeetti hai election November mein, so what will be the power so that the presidential powers can be sustained for this stoppage of US-Iran war? Is there anything on that?
1: Mr. Kaushik, your first question is about why, if India's GDP is high, and how to stop FPIs. You see, FPIs and FII money, we just spoke of a little while ago. This is independent money, first of all. You know, this is rotating money. They keep looking for bargains, you know. They go to Taiwan, they go to Vietnam, they go to China, they go to Korea, they go to other markets, you know, wherever they find a bargain. It's like you're carrying your money, and you've got right to shop wherever you want to. So this is, first of all, this is not a permanent exodus. You should understand this. And there is no way, and I think we should also not, since we don't stop them from coming in, we should not stop them from going out. I think the company's performance, the corporate performance itself, attracts investors. So there is no deliberate act that, you know, a government or any regulatory agency does. Because if we show signs of any regulatory act, then next time, Mr. Kaushik, they will hesitate in coming to India. You know that, hume to yahan aake phir nikalne nahi diya jata. So I think this is a natural process. It is based on performance. Your second question is regarding if Democrats win, what will be the impact on the markets? I think the powers of the president, first of all, I mean, a lot of listeners don't know, Nishit and Prachi, that if the Democrats win, President Trump will still remain till 2028 end. It is just that some of his powers of getting decisions ratified from the House of Representatives and the Senate, they will get curtailed. So I think if some of the policies which President Trump has implemented, he might find it harder to, you know, take them forward, whether it is war related, whether it is something else. I think we'll have to wait and see. This is regarding American politics. And let's wait and see. We've got less than a month left now from here, and we'll know in a few weeks' time.
2: Yes. दिल्ली से हमारे साथ उमा शंकर जुड़ रहे हैं. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: नमस्कार जी.
1: नमस्कार.
3: हेलो
1: जी.
2: जी, अपना सवाल पूछिए.
3: हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि धरती पर जो नेचर होने के बाद एक चक्रवर्ती ब्याज मिलता है जिसको आप लोग कंपाउंड ब्याज भी कहते हैं
1: जी,
3: तो ये सरकारी पे और प्राइवेट में दोनों में ही होता है. आज का एक एक्सपीरियंस ये हुआ कि प्राइवेट वाला बोलते हैं इसमें कोई ऐसा कंपाउंड ब्याज नहीं है, पहले तो उन्होंने यस बोला था, अब वो पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. दूसरा ये है कि गोल्ड के लिए गोल्ड में येलो, पिंक और व्हाइट, तो इनके क्या रेट अलग अलग होते हैं? कि लास्ट टाइम भी मैंने ये सवाल पूछा था, पर उन्होंने हमें कुछ येलो भी.
1: अच्छा अच्छा, ओके. एक तो मैं निशित और प्राची की इजाजत से सभी श्रोताओं को एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जब बोलें तो अपने शब्दों को बहुत स्पष्ट बोलें. आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए बोलते हैं, जैसे घर में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप रेडियो पर हैं, तो स्पष्ट बोलें. आपकी बात, पहला सवाल कुछ कुछ समझ में आया, दूसरा तो पूरा समझ में आ गया. शायद आप एफडी की कंपाउंडिंग से संबंधित कुछ पूछ रहे थे. प्राइवेट और जो निजी बैंक है, कंपाउंडिंग तो दोनों जगह होती है. ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एफडी बिना कंपाउंडिंग के दी जाए. ये हो सकता है कई दफे, हाँ, कि जैसे आपकी एफडी एक्सपायर हो गई और आप उसको रिन्यू कराने नहीं गए और वो ऑटो रिन्यूअल पे नहीं थी, तो फिर आपको कंपाउंडेड ब्याज उसमें नहीं दिया जाता है. आपको नॉर्मली कुछ बैंक तो सेविंग्स अकाउंट का फिर ब्याज दे देते हैं, ऐसा भी होता है. तो चेक कीजिएगा उमा शंकर जी कि आपने जो एफडी कराई थी उसमें वो था कि नहीं था आपका ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन. ये हमेशा डालना चाहिए एफडी में. दूसरा आपका सवाल पिंक, येलो और व्हाइट गोल्ड से संबंधित है. देखिये, व्हाइट गोल्ड और पिंक गोल्ड ये हम ऑर्नामेंटल कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, यानी कि जब उससे जेवरात बनाए जाते हैं. मैंने देखा कुछ महिलाएं जो है वो पिंक गोल्ड पहनना पसंद करती हैं. वो गोल्ड के ऊपर एक पिंक कलर का पानी सा चढ़ाया जाता है, रोज गोल्ड कहते हैं उसको, और व्हाइट गोल्ड भी एक तरह से पानी चढ़ाया जाता है. वो देखने में सिल्वर जैसा दिखता है पर अंदर से वो गोल्ड होता है. तो ये एक इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है उमा शंकर जी. बेसिकली अंदर से तो गोल्ड ही होता है. इसमें मुख्य बात ये देखने की अंदर जो उसके गोल्ड है वो 22 कैरेट का, क्योंकि ऑर्नामेंट्स की बात है, आपको पता 22 कैरेट से ज्यादा का गोल्ड नहीं बनता, कि अंदर वो 22 कैरेट है या नहीं है. पर निवेश के लिए अगर आप लेंगे तो निवेश के लिए फिर पिंक और व्हाइट का मत सोचिए. निवेश के लिए तो वो जो पीला चमचमाता हुआ होता है वही मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की पसंद होता है. हाँ, ये जेवरात के लिए व्हाइट और पिंक की एक महज सजावट की चीज है. आपने मान लीजिए पिंक ड्रेस पहनी है, जैसे अभी प्राची ने बताया रोज गोल्ड, तो उसके साथ कुछ महिलाएं पिंक गोल्ड पहनती है. अब आपने मान लीजिए कोई सिल्वरिश आउटफिट पहना हुआ है.

0: तो आप उसके साथ व्हाइट गोल्ड प्रेफर कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ एक एक सजावट की वस्तु है।
1: आगे बढ़ते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार 8वें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई, ये 25 वर्षों में सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट है। वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। छोटी अवधि वाले कारोबारी सप्ताह में सभी सत्रों में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को भारी बिकवाली देखी गई। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1986 अंक यानी 2.7% गिरकर 71,910 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 719 अंक यानी 3.1% फिसलकर 22,422 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 3.5% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक लगभग 3.5% नीचे रहा। औद्योगिक क्षेत्र के शेयर सूचकांकों में आईटी सूचकांक में ही एकमात्र बढ़त रही। इसके विपरीत ऑटो करीब 6% की गिरावट के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी और मेटल सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 39 पैसे कमजोर होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 96.31 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। और इस बीच नोएडा से हमारे साथ विनय जुड़ रहे हैं। विनय जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: मार्केट मंत्रा की पूरी टीम को नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मेरे सर आज दो प्रश्न है कोहली साहब से। पहला है कि मुझे कुछ शेयर्स अपनी बेटी को ट्रांसफर करना है जो 18 प्लस हो गई है
3: जी।
2: वो उसकी क्या प्रक्रिया है? और दूसरा प्रश्न है मेरा कि सर ऑटो सेक्टर में इतना ज्यादा गिरावट क्यों आई है? धन्यवाद सर।
3: चलिए विनय, आपका पहला सवाल है शेयर्स आप अपनी बेटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। पहले तो मुबारक हो, आपकी बेटी 18 साल की पूरी हुई है। उसके लिए देखिए, इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं। अगर आपके वो लिस्टेड शेयर्स हैं तो नॉर्मली जिस डीमैट या डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर हैं तो उनसे आप संपर्क करिए और वो आपको एक रिलीज स्लिप देंगे। वो रिलीज स्लिप साइन करके आप जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो भरा जाएगा, जिसके अकाउंट से करा जाता है वो भरा जाएगा। इसको हम ऑफ मार्केट ट्रांसफर कहते हैं और ये गिफ्ट माना जाएगा विनय, क्योंकि वो 18 साल की हो गई है तो ये टैक्स के लिहाज से भी फायदेमंद है। अब वो आपके उसका जो डिविडेंड आएगा, कैपिटल गेन आएगा, आपकी इनकम में क्लब नहीं किया जाएगा क्योंकि वो मेजर हो गई, माइनर चाइल्ड के लिए होता है। तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, आपको वो स्लिप देंगे, वो स्लिप साइन करके आप ऑथोराइज करेंगे, उसको रिलिंक्विशमेंट नोट भी कहते हैं। तो आपके अकाउंट से उठ के वो बिटिया के अकाउंट में आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ऑटो के शेयर्स विनय, जबकि ऑटो की बिक्री के आंकड़े अभी आप पहली तारीख को आए, लगभग सभी बड़ी ऑटो कंपनीज के बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े आए, पर मुझे लग रहा है विनय इसमें जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है वो दबाव में। और दूसरा एक और कारण भी मैं मानता हूं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले 7.5-8 रुपए के करीब बढ़ाई गई थी, और जिस तरीके से कच्चा तेल इस समय उबाल मार रहा है बार बार, तो ऑटो मुझे लगता है निवेशकों के दिमाग में ये भी है कि कल को अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो शायद यहां पर ऑटो की बिक्री पर आगे फर्क पड़ सकता है। तो कई बार मार्केट के सेंटिमेंट्स आगे आने वाली घटनाओं को पहले डिस्काउंट कर लेते हैं। पर इसमें बिना स्ट्रैटेजी क्या है कि आप जो ईवी कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लगातार बढ़ रही है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को इसके लिए मैं कुछ हद तक कसूरवार मानता हूं।
4: मूविंग ऑन टू यूएस मार्केट्स, द यूएस स्टॉक मार्केट्स एंडेड हायर यस्टरडे एज वीकर देन एक्सपेक्टेड जॉब्स डेटा डैम्पन एक्सपेक्टेशंस फॉर अ रेट हाइक फ्रॉम द फेडरल रिजर्व at its policy meeting this month. Among the major indices, the Nasdaq composite surged 1.2%, the S&P 500 rose over 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average climbed 0.5%. For the week, the Nasdaq rose over 0.4%. Conversely, the Dow shed 1.3% and S&P lost 0.3%. On the economic front, the non-farm payroll employment rose by 29,000, while the unemployment rate rose slightly to 4.2% last month, according to data released by the U.S. Bureau of Labor Statistics.
1: और बीआर आचार्य कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: थैंक यू मैडम।
1: जी,
4: अपने रेडियो सेट को प्लीज थोड़ा वो कम कर दें या बंद कर दें।
5: कम कर दिया सर
3: जी।
5: आई एम सीनियर क्लास वन रिटायर्ड सीनियर क्लास वन ऑफिसर
3: जी।
5: मेरे एनपीएस है
3: या?
5: वो अभी मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है

0: market has gone down, so there is no hope that it will come again. Shall I continue or not?
1: Okay. Mr. Acharya, first of all, I would like to very politely and humbly, you know, point out that I think you should not feel so pessimistic. You said there is no hope that market will ever recover. I think we move on optimism and the market has to recover at some point. But I would suggest, because NPS is a very good scheme, and I'm sure your corpus must not be doing very well at this point of time, but I would definitely not recommend you to exit, because you're a retired person and NPS is meant for people who are retired. So therefore, I would hesitate from saying that you should close your NPS account. And I would very, very fervently and politely again request you that please give up the word no hope and let us remain optimistic.
2: आगे बढ़ते हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि भारत को ऐसे पूंजी बाजार की जरूरत है जो पूंजी जुटाने, जोखिम का प्रबंधन करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में सक्षम हो. नई दिल्ली में आज कमोडिटी और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS की शुरुआत के बाद नियामक डेरिवेटिव की एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट प्राइस तय करने से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहा है. सेबी चेयरमैन ने कहा कि नियामक कैश मार्केट में तरलता को बढ़ाने और बेहतर बनाने, निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने तथा सिक्योरिटीज लेन देन को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि प्रभावी हेजिंग और आर्बिट्राज से कीमतों के उत्तम निर्धारण में मदद मिल सकती है और कैश तथा डेरिवेटिव्स बाजारों के बीच तालमेल मजबूत हो सकता है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकेगा. शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटीज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौते का काफी विस्तार किया है.
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो $10 ट्रिलियन. गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया. 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो $60 ट्रिलियन.
4: And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. Under this framework, the unified payments interface UPI transactions of up to 2,000 rupees will attract zero MDR. A question that might arise in your mind is whether government utility bill collections will incur percentage MDR. According to National Payments Corporation of India, public utility payments including electricity, distribution, municipal water charges and piped natural gas fall under the designated industry program category. It added utility bill payments above 2,000 rupees will attract a flat concessional MDR of 5 rupees instead of the variable rate of 0.4%. Utility transactions under 2,000 rupees will carry zero MDR. This framework ensures state utility boards and municipal corporations to digitize bill collection without incurring high processing fees, keeping public utility services affordable.
2: बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
1: थैंक यू सो मच. धन्यवाद.
4: थैंक यू सो वेरी मच शरद जी. एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. India's economic resilience built over past decade through reforms, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. Benchmark domestic indices post the longest weekly losing run in 25 years. Sensex and Nifty decline around 3%, and Wall Street wraps up week on mixed note. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
6: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ऐसे गीत जो आज भी दोस्तों मनमीत की शक्ल में हमारे साथ हमारे जीवन में बने हुए हैं। गीत मेरे मनमीत का ये प्यारा अंदाज लिए स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं रोहिणी। दोस्तों कहते हैं जब जिंदगी के सफर में हम अपना सफर बिता रहे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब नजर उठा के देखते हैं तो खुद को तन्हा पाते हैं। ऐसे में गलत नहीं कि समेट लो नाजुक पलों को, न जाने ये लम्हे हो ना हो, हूं भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आगाज गीत मेरे मनमीत का इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है तुमसा नहीं देखा फिल्म से आशीष जी और रफी जी की आवाज में ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत से सजाया ओपी नावियर साहब।

0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। कहते हैं कि नजरों का इश्क लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा होता है, और ये गहराई और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब इसमें गीत संगीत का अपना एक अलग ही जो पुट है वो आ जाता है। बॉयफ्रेंड फिल्म से ये अगला गीत आप सुनेंगे रफी साहब की आवाज में। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को अल्फाज दिए हैं और शंकर जयकिशन साहब का संगीत। तो आइए सुनते हैं ये अंदाज।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन में। लेकिन श्रोताओं, समय हमें इजाजत नहीं देता कि आज के इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएं, लेकिन प्यारे सदाबहार गीतों का साथ आपके साथ बना रहेगा 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं जिंदगी की वो खुशी, वो इंसान, वो शख्सियत होता है जिससे अगर जुदाई का समय आए तो थोड़ा सा दिल बेकरार होता है। जी हाँ, लेकिन समय पर भरोसा रखिए और खुद पर भी, क्योंकि समय जिस तरीके से थोड़ा सा आपको दुख पहुंचाता है, वैसे ही आपको खुशी के लम्हे भी जरूर देके जाता है। तो आइए, आपको छोड़े जाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए अंदाज में, पुराने सदाबहार गीतों के साथ। 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभरात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें क्वार्टरली आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया।

0: है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक वापस भारत लाई है। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में वेस्टइंडीज ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर 352 रन बनाए। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi yesterday, Ms. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी नैना और देव की, शीर्षक रॉन्ग नंबर।

जी हाँ, कहानी नैना और देव की। नैना लगातार डॉक्टर टंडन को फोन मिला रही थी। वो बेहद घबराई हुई थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। वो रात के सन्नाटे में मानो चीख सी रही थी। हेलो हेलो डॉक्टर टंडन, माँ की हालत बहुत खराब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। आप सुन रहे हैं ना, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? गरजते बादल कुछ सुनने कहां दे रहे थे। अचानक बिजली चमकी और लाइट चली गई। नैना को घबराहट में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था और माँ के सिवा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। अपनी दुनिया को लूटती देखकर वो जैसे तैसे फैमिली डॉक्टर टंडन का नंबर ढूंढकर उन्हें फोन मिला रही थी, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक किसी ने फोन उठाया। उधर से हेलो की आवाज सुनते ही नैना फफक पड़ी। डॉक्टर साहब, बस आप जल्दी से आ जाइए, वरना माँ को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आप देर मत कीजिए प्लीज। आप सुन रहे हैं ना? लेकिन मैम, मैं उधर से किसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नैना कहाँ सुन पाई। जल्दी से बोली, बस आप जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। ठीक है मैम, आप अपना एड्रेस बताइए, उधर से कहा गया। नैना ने जल्दी से पता नोट कराया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। नैना माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वो लगातार रोई जा रही थी। ऐसी हालत में उसे दूर दूर तक कोई धैर्य बधाने वाला भी नजर नहीं आ रहा था।

नैना लगातार अपनी माँ के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके पिता उसे और उसकी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। तब से माँ ने ही उसे जैसे तैसे पाला था और आज वो इस हाल में है। कैसे जिएगी वो अपनी माँ के बिना? यही सोच सोच कर डर और घबराहट से नैना का बुरा हाल था। वो अपनी माँ के बिना एक पल भी जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। आईसीयू के बाहर खड़ी नैना बड़ी बेसब्री से अपनी माँ की कुशलता जानने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक किसी ने हौले से कंधे पर हाथ रखा। नैना ने पीछे पलट कर देखा तो एक हाथ से दिव्यांग एक लड़का था जो उसे तसल्ली दे रहा था। आप रोइए मत, आंटी ठीक हो जाएंगी, खतरे की कोई बात नहीं है। और कुछ ही देर बाद किसी ने उसे बताया कि नैना की माँ अब बेहतर है, उनकी तबीयत अब ठीक है।

नैना को इस तरह किसी अजनबी का अपने पन से बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कहावत है ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। नैना ने सोचा कि ये यहीं का कोई वार्ड बॉय या कोई कर्मचारी होगा। खैर, उसने देखा कि वो लड़का लगातार उसकी माँ की देखभाल ऐसे कर रहा था जैसे कि कोई अपना करता है, लेकिन नैना ने उसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही दिनों में नैना की माँ ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई और नैना ने राहत की सांस ली।

जी हाँ, ये जीवन है और इसका यही रंग रूप है, ऐसा मानकर नैना उस घटना को भूल गई। जीवन फिर से अपने ढल्ले पर चलने लगा। एक दिन यूं ही नैना किसी को फोन मिला रही थी। अचानक उसने देखा कि ये किसका नंबर है जिस पर उसकी पिछले दिनों बात भी हुई है। उसे याद आया कि उस दिन घबराहट में उसने डॉक्टर टंडन की जगह शायद किसी और का नंबर मिला दिया था और इस नंबर पर उसकी बात भी हुई है। अगर डॉक्टर टंडन से बात नहीं हुई तो फिर ये एम्बुलेंस किसने भेजी? नैना ने देखा कि वो नंबर जिस पर बात हुई है अभी भी आउटगोइंग कॉल की लिस्ट में मौजूद था। कांपते हाथों से उसने वो नंबर डायल किया। हेलो, एक बेहद प्यारी, मीठी और सुकून देने वाली आवाज सुनाई दी। मैं नैना बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं देव बोल रहा हूँ। देव जी, अगर आपको याद हो उस दिन मैंने आपका नंबर

गलती से मिला दिया था। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान और घबराई हुई थी, देव बोला। तो वो एम्बुलेंस? जी हाँ, मैंने ही भेजी थी, उसकी बात को काट कर देव बोला। ओह शुक्रिया, मुझे तो घबराहट में कुछ ध्यान ही नहीं रहा, नैना ने झिझकते हुए कहा। कोई बात नहीं, हो जाता है। खैर अब माँ जी कैसी हैं? अच्छी हैं अब, नैना ने कहा। ध्यान रखिएगा उनका और अपना भी। बहुत प्यारी आवाज थी, राहत और सुकून से भरी हुई, और उसमें घुली हुई स्नेह और फिक्र नैना के दिल में सीधे सीधे उतर रहे थे, और नैना के नैना देव का एक चित्र बुनने लगे थे।

अब तो अक्सर नैना और देव की बातें फोन पर होने लगी थी। लंबी लंबी बातें, प्यारी प्यारी बातें, ढेर सारी बातें। देव से बातें करते वक्त नैना का दिल करता कि वो बोलता रहे और नैना बस खामोश होकर सुनती रहे। देव की आवाज में एक गजब की कशिश थी, अजीब सी मिठास थी जो सुनने वालों की रूह तक उतर जाती थी। बातें भी वो बहुत प्यारी करता था, हर बात सुलझी और समझदारी से भरी हुई। अपनी मोहक आवाज और मीठे अंदाज की वजह से देव हर पल नैना के दिल में उतरता जा रहा था और नैना दिल ही दिल में उसके सपने सजोने लगी थी।

सपनों में ही सही, दूर दूर से ही सही, बातों बातों में ही सही, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ चुके थे। ये अलग बात है कि अब तक दोनों ने एक दूसरे को देखा तक ना था। जब भी नैना देव से मिलने की बात करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता। एक दिन बातों के दौरान देव ने नैना से पूछा, नैना तुम्हें एक पुरुष में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? पुरुष में? नैना थोड़ा सा कुचाई, फिर बोली, बाहें अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मजबूत किले की दीवारें हों जिसमें एक लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। लेकिन नैना, अगर किसी की बाहें ही ना हो तो? देव, तुम भी ना कैसी बातें करते हो। मैं जानती हूं कि मेरा देव इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, लेकिन नैना, अगर मैं तुम्हारे सपनों के राजकुमार जैसा ना हुआ तो? तो कुछ नहीं देव, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे पसंद हो बस, नैना ने लापरवाही से कहा। आखिर प्यार दीवाना जो होता है

जी हाँ, प्यार दीवाना होता है, लेकिन सपनों और बातों के सहारे सिर्फ रिश्ते जुड़ते हैं, जिंदगी नहीं बसर होती। उसके लिए मिलना और एक दूसरे के साथ निभाना भी जरूरी होता है। नैना के बहुत कहने पर देव मिलने के लिए मान गया। पहली मुलाकात थी, एक बस स्टैंड पर नैना को आना था और फिर वहां से दोनों को साथ जाना था, यही तय हुआ था। नैना आज बहुत खुश थी, अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहनी और पहले से कहीं ज्यादा वो हसीन लग रही थी। खुद को आईने में निहार कर मुस्कुराई और चल पड़ी देव से मिलने। आज उसका लंबा इंतजार खत्म होने वाला था, जिसको देखने के लिए, मिलने के लिए वो तरस रही थी। आज उससे मुलाकात होने वाली थी। नैना के नैना रंग बिरंगे सपने सजा रहे थे।

टीसी उधेड़बुन को लिए नैना तय समय से पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच गई और बड़ी ही बेसब्री से देव के आने का इंतजार करने लगी। एक एक पल एक एक जिंदगी की तरह गुजर रहा था। नैना पूरी तरह से देव के ख्यालों में खोई थी कि देव ऐसा दिखता होगा, वैसा दिखता होगा। देव की आवाज के आधार पर जैसा चित्र उसने अपने ख्यालों में बुना था उसी में उलझी हुई थी। अचानक कोई बगल की सीट पर आकर बैठा तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कुछ जानी पहचानी सी सूरत लग रही थी, जैसे पहले कहीं देखा हो। वो भी लगातार नैना को अपनेपन से देखे जा रहा था। जी कहिए, क्या बात है? उसे देखते हुए देखकर नैना बोली, जी आप नैना हैं? हाँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? अचानक नैना को याद आया कि ये तो वही एक हाथ से दिव्यांग लड़का है जो उस दिन नैना को हॉस्पिटल में मिला था और उसने नैना की माँ की देखभाल की थी। लेकिन देव के ख्यालों में खोई नैना को आज इस लड़के की यहाँ पर मौजूदगी नागवार गुजर रही थी। वो बात करना चाहता था लेकिन नैना ऐसे लड़के को कोई भाव नहीं देना चाहती थी। वो बोली, देखिए उस दिन आपने मेरी माँ का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कुछ और कहना चाहता था लेकिन नैना ने उसे अनसुना कर दिया और ऐसी उपेक्षा भरी नजरों से देखा कि वो लड़का उसे बर्दाश्त ना कर सका और वहां से उठकर चला गया। नैना फिर से अपने देव का इंतजार करने लगी। उसके जहन में ये गीत गूंज रहा था।

इंतजार करती रही, लेकिन देव नहीं आया। उसका फोन भी बंद था। नैना बुझे मन से वापस लौट आई। हजारों प्रश्न उसके जहन में कौंध रहे थे। आखिर देव ने ऐसा क्यों किया? कहीं देव का प्यार छलावा तो नहीं? कहीं देव ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया? कहीं देव के साथ कोई अनहोनी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्सर जब भी ऐसा कुछ हमारी जिंदगी में होता है ना, तो हमारा ख्याल भी नेगेटिव ही हो जाता है ना? खैर, नैना भी सवालों के इन्हीं उधेड़बुन में उलझी। बार बार वो रॉन्ग नंबर मिला रही थी और कभी खुद को तो कभी देव को कोस रही थी। इससे ज्यादा वो और कर भी क्या सकती थी? आखिर वो देव के बारे में जानती क्या थी? एक मोबाइल नंबर के अलावा और कुछ भी तो नहीं था उसके पास। कहां ढूंढती उसे? समय गुजरता गया, लेकिन ना तो देव का फोन आया और ना ही देव। गुस्से में नैना ने देव को फोन मिलाना छोड़ दिया।

तो ये थी कहानी रॉन्ग नंबर। आपको कैसी लगी? आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868868753 पर हमें मैसेज करके बता सकते हैं। तो अब कुसुम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए AIR FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता

0: आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं के सामने चुनौती विनियमन और विकास में से किसी एक को चुनने की नहीं है, बल्कि ऐसे नियम विकसित करने की है जो नवाचार, प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ावा देते हुए जोखिमों का प्रबंधन करें। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। हालांकि कल तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 352 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे वेस्टइंडीज ने 48 ओवर 2 गेंद में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ 4th स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, insolvency and bankruptcy code, and the 4 labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And a current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: Union Home Minister Amit Shah has said that once the

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मुकेश और आशा जी की आवाज के साथ।
1: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे

आशा जी और मुकेश की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। फिल्म का नाम मोहब्बत इसी को कहते हैं। संगीत था खयाम साहब का और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। ये फिल्म आई थी 1965 में और ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसे लिखा और निर्देशित किया था अख्तर मिर्ज़ा साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी शशि कपूर, नंदा, रमेश देव, लीला चिटनिस और अनवर हुसैन साहब ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिल्म का नाम काली टोपी लाल रुमाल और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। संगीत इस फिल्म को संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था तारा हरीश ने और प्रोड्यूस किया था देवी शर्मा ने। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

स्वादिष्ट मेगाहर्ट्स पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:32 और 27 सेकेंड, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में।

फिल्म उजाला से सुना आपने ये गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और मन्ना डे की, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे हसरत जयपुरी साहब। ये फिल्म आई थी 1959 में और ये एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें अभिनय किया था शम्मी कपूर, माला सिन्हा, राजकुमार, लीला चिटनिस और टुनटुन ने। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था नरेश सहगल साहब ने और इस फिल्म ने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचाया और वो संदेश था कि ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

फिल्म का नाम मेरा साया और आवाज़ थी आशा जी की। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म को निर्देशित किया था राज खोसला ने, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने और इस फिल्म के जितने भी गीत थे उन्हें शब्दों में पिरोया था राजा मेहदी अली खान साहब ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी सुनील दत्त और साधना ने। अगला गीत रफ़ी साहब और

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 1:50 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में, फिल्म नवरंग से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन

0: सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि 3 लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई की कंपनी हंसर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंधकों और जमानतियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस धोखाधड़ी से पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी को कथित तौर पर 93,44,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को मुंबई में कंपनी के प्रबंधकों से संबंधित कई स्थानों पर तलाशी ली। जापान एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी ओट्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, insolvency and bankruptcy code and the 4 labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
3: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
2: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as the chairperson of the Committee on Finance

तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तुमने जब पहली बार मेरा हाथ थामा था, तो मैंने ये जाना कि दो शहरों की दूरी सिर्फ हाथों को थाम लेने भर से ही कम हो जाती है। दशमलव एक मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:11 और 47 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रफी साहब और आशा जी की आवाज के साथ।

तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है। सुना है रात भर बरसा है बादल, मगर वो शहर जो प्यासा रहा है। वो कोई दोस्त था अच्छे दिनों का, जो पिछली रात से याद आ रहा है। तेरे आने का धोखा सा रहा है, दिया सा रात भर जलता रहा है।

सच कहूं तो इतना सफर करने के बाद, सच कहूं तो इतना सफर करते हुए थकने के बाद, यदि फिर भी अंत में मुझे कहीं पहुंचना है, तो वो केवल तुम हो।

0: एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले। और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर बहुत है।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से महक जाए, सोच तेरे दीदार से उसका क्या होगा। MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। मैं हूं आपके साथ, आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:41 और 31 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत रफी साहब की आवाज में, फिल्म कश्मीर की गली से।

दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन ऑफ FY।
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर वन ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

0: अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ. काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया कि तीन लोग भारतीय इलाके में घुस आए थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की चेतावनियों के बावजूद वे पाकिस्तान लौटने के बजाय सीमा की बाढ़ की तरफ बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण बीएसएफ को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। पाकिस्तान से कहा गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। एशिया खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी उड्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। जापान में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms, and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code, and the 4 labor codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026. And a current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter 1. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low. And foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice system will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs, while the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta. Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry.

हमारे सभी सुनने वालों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमराही कार्यक्रम में, जहां मैं हूं इस खूबसूरत से पल में आपके साथ, आपकी अपनी रूपा धवन। और आज हम बात करेंगे उन नगमों की जहां दो आवाजें मिलकर एक नई दास्तान लिखती हैं। दिल के किसी कोने में छिपी मोहब्बत जब अल्फाज बनती है तो युगल गीत का रूप ले लेती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सुरों का सफर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तो भाई वैसे तो सफर की शुरुआत हमेशा किसी की आहट और पहली नजर से होती है, जब दो अजनबी पहली बार नजरें मिलाते हैं।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हमराही में। हमराही में आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो जनाब, हम आज बात कर रहे हैं उन नगमों की जहाँ दो आवाज़ें मिलकर एक नई दास्तान लिखती हैं। दिल के किसी कोने में छिपी मोहब्बत जब अल्फाज बनती है तो युगल गीत का रूप ले लेती है। तेरी पहली नज़र का वो नशा आज भी है, तेरी पहली नज़र का वो नशा आज भी है, तेरे साथ बिताया हर लम्हा खास आज भी है। हम राहों में अकेले चले थे मगर तेरे जुड़ने से इस सफर में मिठास आज भी है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां इस वक्त आपके साथ हूं मैं, आप ही की अपनी आप ही की दोस्त रूपा धवन। और रूपा धवन आपके लिए लेकर आई है हमराही कार्यक्रम, जिसमें आप सुन रहे हैं बेहद ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता। धीरे धीरे मोहब्बत का दिल पर गहरा असर हो जाता है, और ऐसे में जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब आंखें कुछ इस तरह से बातें करती हैं।

इश्क जब हद से बढ़ा तो इकरार बन गया, इश्क जब हद से बढ़ा तो इकरार बन गया, हर ख्वाब मेरा अब तेरा दीदार बन गया। यूं तो चले थे राह पर अकेले ही हम, यूं तो चले थे राह पर अकेले ही हम, तू मुस्कुराया और सारा जहां मेरा यार बन गया।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

जब दो हमरा ही साथ हों तो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, मौसम खुशनुमा लगने लगता है। वैसे हमराही का अर्थ सिर्फ हमेशा पास रहना ही नहीं, बल्कि

तेरे बिना मेरे ये गीत भी पूरे नहीं बनते। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से आशा जी और रफी साहब की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

मोहब्बत का रिश्ता कुछ इतना गहरा हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि साथ निभाने के वादे अपने आप बन जाते हैं। हाथों में तेरा हाथ हो, हाथों में तेरा हाथ हो और उम्र भर का साथ हो, हर सुहानी धूप में और हर काली रात में, छू ना पाए गम का कोई साया भी हमको, ए हमराही बस इतनी सी खुदा से फरियाद हो। जी हाँ, दो दिलों की दास्तान, कुछ वादे पूरे हुए कुछ अधूरे रहे, लेकिन दो दिल हमेशा जुड़े रहे एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से। यही तो अधूरे सपनों की पूरी कहानी है। जी हाँ, कई बार दिलों की दास्तान पूरी हो जाती है, कई बार नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए दिल में बहुत सारा प्यार हमेशा बना रहता है।

0: और इसी तरह कुछ सपनों के साथ झिलमिलाते हुए फिर से अगले पड़ाव पर मिलेंगे। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और थोड़ी देर बाद यानी 4:10 पर अरुणिमा मैं आपके साथ फिर से रहूंगी। तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टीडेकेडल लो।
1: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भृतहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही

0: ही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई एक घटना में लगाए गए बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। पाकिस्तान से कहा गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करें, संबंधित द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 19वां संस्करण अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार की साझेदारी में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। एशियाई खेलों में गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रणवी उड्स को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके अलावा इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग अदिति अशोक, प्रणवी और दीक्षा डागर की भारतीय महिला टीम को टीम इवेंट में रजत पदक जीतने के लिए 25-25 लाख रुपए भी देगी। एशियाई खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mr. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
2: Real GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY27. CPI inflation was about 4.82 in August 2026, and the current account deficit was 0.5% of the GDP in quarter one. Gross NPAs of banks are at multi-decadal low, and foreign exchange reserves stand about $766 billion.
1: Union Home Minister Amit Shah has said that once the Bharatiya Nyaya Sanhita is fully implemented, India's criminal justice will become the most modern in the world. He said that after full implementation of the BNS, cases could be disposed of within 3 years from the registration of an FIR to the Supreme Court. Mr. Shah said this while addressing the state-level Gaupalak Sammelan in Bhopal yesterday. Lok Sabha Speaker Om Birla has reconstituted several parliamentary committees related to different ministries. BJP MP Bhartrihari Mehtab has been appointed as a chairperson of the Committee on Finance, comprising 21 members from Lok Sabha and 10 members of Rajya Sabha. Mr. Birla has appointed Congress MP Shashi Tharoor as chairperson of the Committee on External Affairs. While the Committee on Railways will be headed by BJP MP Sudhir Gupta, Mr. Birla has appointed Lok Sabha MP Dr. Kakoli Ghosh Dastidar as chairperson of Committee on Chemicals and Fertilizers. Congress MP Charanjit Singh Channi will be the chairperson of Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing. BJP MP Radha Mohan Singh will be the chairperson of the Committee on Defence. BJP MP Rajiv Pratap Rudi has been appointed as the chairperson of the Committee on Water Resources, while the Committee on Rural Development and Panchayati Raj will be headed by the Congress MP, Saptagiri Ulaka. BJP MP Nishikant Dubey has been appointed as the chairperson of Committee on Communications and Information Technology. The 19th edition of the

समय हुआ है 4:11 और 20 सेकंड। जी हाँ, आधी रात और आधा दिन, रात की ये खामोशी का पहर अपने साथ बहुत सी बातों को लेकर आता है। जब इस समय यानी 4:11 पर ये समय अरुणिमा का जहाँ धीरे धीरे हौसलों की नई उड़ान का ऐलान करती है अरुणिमा, इसी सकारात्मक विचार के साथ आगाज करते हैं आज की अरुणिमा का। साथ हूं मैं आपके, आप ही की अपनी दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

साथियों, वैसे हम सबको पता है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की पहली किरण हमें ये याद दिलाती है कि हर अंधेरे का अंत तय है। जी हाँ, हमारी जिंदगी पर का चाहे गम के बादल कितने भी गहरे छाएं, कितना भी ज्यादा घनघोर अंधेरा हो, हमारे दिल को कोई राह ना सूझ रही हो, लेकिन एक तय समय पर वो दुख के बादल जरूर छटते हैं और उन दुख के बादलों में से सुख की उजियाली किरण हमारे जिंदगी में खुशियों का उजाला लेकर आती है।

साथियों, शब्दों में बड़ा जादू होता है। यही शब्द जीवन में उत्साह का संचार करते हैं। यही शब्द आत्मा को भी दुखी कर सकते हैं। सोचिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने का उत्साह कितना दोगुना हो जाता है जब कोई हमारी सराहना करता है। छोटी सी शाबाशी का लफ्ज कमाल कर जाता है। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके शब्दों का भी कुछ ऐसा ही जादू है। स्वर है स्वर साम्राज्य लता जी का, फिल्म है नौकर।

भाई दूसरों से तारीफ का इंतजार क्यों करना। जी हाँ, हम काम तो करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई उस काम की तारीफ करे। अगर काम की तारीफ ना भी हो तो क्या है कोई ऐसी घबराने की बात तो नहीं है। जब आप कुछ अच्छा करें तो खुद की पीठ खुद भी थपथपा लें। जी हाँ।

खुद भी थपथपाना अपनी पीठ को उतना ही जरूरी है जितना दूसरे, और यकीन माने दूसरों से ज्यादा अपने आप को दी गई शाबाशी बहुत जादू का काम करती है। दूसरों की तालियों का मोहताज ना बन, दूसरों की तालियों का मोहताज ना बन, तो खुद अपनी राहों का नवाब बन। छोटी सी जीत पर भी मुस्कुराना सीख ले, तो खुद अपनी कहानी का आफताब सुन। हावड़ा ब्रिज का ये गीत खूबसूरत सी आवाजों के साथ, आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी की आवाज के साथ, आप सभी के लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:35 और 28 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में अपने ही दोस्त रूपा के साथ। आइए सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से ये गीत लता जी और महेंद्र साहब की आवाज में।

मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफें भी उतनी होंगी, इसीलिए लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं और बाधाओं को पार करते रहें। आगे बढ़ते रहने से हम अपनी मंजिल पर कभी ना कभी तो पहुंच ही जाते हैं, जैसे कि हम आपके साथ हैं इस सफर पर, अरुणिमा का सफर और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, आपका पसंदीदा चैनल। आपके साथ जुड़े हुए हैं हम और आप। समय हुआ है बहुत ही बेहद खूबसूरत प्यारा सा सफर और बहुत ही प्यारा सा समय, 4:42:37। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ और आइए अब सुनते हैं गीता मेरा नाम फिल्म से ये गीत लता जी की आवाज में।

साथियों, अगर गलतियों की बात करें तो गलतियां तो किससे नहीं होती। अगर गलतियां इंसान से नहीं होती तो फिर क्या बात थी। जब हम इंसान हैं तो छोटी मोटी भूल तो हो ही जाती है, लेकिन हाँ, शर्त ये है कि वो गलती जानबूझकर ना की गई हो। हर गलती से सबक लें और जिससे आपको नुकसान हुआ, सुधार की कोशिश करना ही जिंदगी की असली परिभाषा कहलाता है। जिस गलती से हम सबक लेते हैं, उसी से हमें सुधारना भी सीखना चाहिए कि जो गलती आज हमने की है, इससे हमारा ये नुकसान हुआ और अगली बार हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि इस गलती को ना दोहराकर हम एक नया मुकाम हासिल करें। जो गलतियों से सबक मिलता है ना जनाब, जिंदगी में वो और किसी से नहीं मिलता। गलतियां हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं और हमारी जिंदगी के रास्ते को और भी ज्यादा निखारती हैं। सुनते हैं चरस फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर जी।

गिरना कोई हार नहीं, उठकर चलना ही कमाल है। हर असफलता के पीछे छुपा सफलता का सवाल है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते जाओ तुम, इसी हौसले में ही तो जिंदगी की ढाल है। जी हाँ, जिंदगी की ढाल अक्सर हमें यही सिखाती है कि जिस तरह से अविरल नदी बहती है, उसी तरह से हमें भी चलते रहना है, क्योंकि जहां पर पानी रुक जाता है वहां पर सड़ जाता है। हमें भी अपने जीवन को एक अंधकार से बचाना है, तो फिर हमें भी चलते ही रहना पड़ेगा।

चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। इसी तरह से अपना हौसला बनाए रखें, खुश रहिए, खुशगवार मौसम में जिए और हमारे साथ चलते रहें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में कल पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर वन ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडल लो।
0: वहीं नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक परिवेश के साथ साथ नियामक ढांचों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रेलवे समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। लोकसभा सांसद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन मच्छार को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छार के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। भारत ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:11 और 20 सेकंड। आप है अपनी दोस्त रूपा के साथ। आज रविवार की सुबह, और रविवार की सुबह बेहद खूबसूरत, आरामदायक। लेकिन जो सुबह का आगाज करते हैं जल्दी उठकर, वही असली में नवाब होते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि आप भी हमारे साथ जगे हुए हैं इस वक्त, और अगर जो नहीं जगे हुए हैं तो जाग जाइए जनाब। चलिए आज की सुबह का आगाज करते हैं उस ईश की वंदना के साथ जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस पालनहार का जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। उसकी शक्ति का कोई पार नहीं है। नमस्कार और सुप्रभात आप सभी को, आपकी अपनी दोस्त रूपा धवन का।

जी हाँ, आज की रविवार की सुबह और आप जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। खुले आसमान में ख्वाबों के परिंदे धीरे धीरे उड़ने लगे हैं। चाहे दफ्तर जाना हो या घर के काम निपटाने हो या दिल में उमंगे हों, और हर काम आसान जब लगता है, कब लगता है? जब आपके मन के अंदर उमंग होती है। आज की उमंग तो कुछ ऐसा कह रही है कि आज संडे का दिन है और संडे के दिन हमें थोड़ा सा तो आराम करना है। लेकिन हर किसी के घर में एक जल्दी उठने वाला सदस्य तो ज़रूर कोई ना कोई होता ही है, जो सभी को छुट्टी वाले दिन भी थोड़ा सा जल्दी उठने के लिए कह देते हैं। ऐसे ही हम भी आपके साथ जुड़े हैं आपको थोड़ा सा जल्दी जगाने के लिए, क्योंकि ये जो खूबसूरत नज़ारा होता है ना प्रकृति का और सुबह का, इसका आनंद जिससे छूट गया सो छूट गया। तो जनाब, इसी उमंग के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके साथ भोर सुहानी में उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ लेकर भोर सुहानी, रूपा धवन। तो जनाब, एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात और प्यार भरा मेरा नमस्कार।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल समय दस्तक दे रहा है 5:28 और 55 सेकंड, और ये संगीत की भी स्वर लहरियां कह रही हैं।

की भोर हो गई है, चिड़ियों की चहचहाहट से रोशन ये सवेरा हो गया, धुंध छटी तो हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। उठो और मुस्कुराकर गले लगाओ इस नई सुबह को, देखो तुम्हारे इंतजार में एक और सुहाना दिन हो गया।